0: कल से तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6। आप सुन रहे हैं इस वक्त आराधना कार्यक्रम वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 7 अक्टूबर 2026। सुबह के 5:54 हुए हैं और इन मीटर्स पर अब हमारे सुबह के प्रसारण आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब समय हुआ है 5:56 और करीब 30 सेकंड्स। ये समय अवगत कराने का आपको उन कार्यक्रमों से जो अब से दिन भर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर हमारे साथ। तो लेते हैं एक संक्षिप्त जानकारी, एक संक्षिप्त रूपरेखा इन कार्यक्रमों की। प्रभात को सुमंगल करता हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात होगा अब से कुछ ही देर बाद, यानी 6:02 से, और इसे लेकर आएंगे आप तक गौतम गौड़। निखिल कुमार होंगे इस प्रोग्राम के ठीक बाद 7:02 से गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर। इस कार्यक्रम में आज आप बेगम अख्तर के जन्म वर्ष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी सुनेंगे, वाइल्ड लाइफ वीक पर बात होगी और भी बहुत कुछ। फिर से जुड़ेंगे गौतम गौड़ के

दिल के तराने गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम सुनेगा निखिल कुमार के साथ 9:02 से। इसके बाद समय रहेगा शालिका कपूर के साथ जुड़ने का और कार्यक्रम होगा वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर, इसे लेकर आएंगी शालिका कपूर। मीना जैन के साथ जुड़िएगा कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स में 11:02 से। दोपहर 12:00 का समय रहेगा न्यूज़ हेडलाइंस का और फिर से इस प्रोग्राम के बाद हाजिर होंगी शालिका कपूर वेस्टर्न म्यूजिक लेकर और इस बार अंक होगा प्ले इट कूल 12:02 से। मीना जैन के साथ सुनिएगा रेनबो हेल्पलाइन। इस फोन इन प्रोग्राम में आज का विषय रहेगा डायल इन आउट एंड मैसेज बेस्ड प्रोग्राम रहेगा, ये टॉपिक रहेगा एआई करियर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर। एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर गरिमा सैनी जो कि शिक्षाविद हैं और काउंसलर भी हैं। इसके बाद स्वाति गुप्ता के साथ जुड़िएगा 2:02 से, प्रोग्राम होगा आशियाना। आशियाना के बाद जुड़िएगा रेडियो डॉक्टर से, इस नियमित फोन इन प्रोग्राम को प्रस्तुत करेंगी आज सृजन राजपूत। एक्सपर्ट होंगे होम्योपैथ डॉक्टर दीपक शर्मा और होम्योपैथ डॉक्टर नीरज गुप्ता। ये थी जानकारी उन प्रोग्रामों की जो आप सुनेंगे आकाशवाणी रेनबो पर। 6:00 को है श्रोता मित्रों, कुछ ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार।

समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन की यात्रा के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना जब्त। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हॉलजोन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबल पुरस्कार। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान जताया। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने की संभावना। नोवाक जोकोविच ने बीजिंग में एलेक्स डीमिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीता। यह जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और भारत ने 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और मंजिल मिले ना मिले ये तो गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, और मंजिल से पहले रुकना नहीं और हौसलों के मामले में झुकना नहीं। 102.6 FM सुप्रभात, सुन रहे हैं आरजी गौतम के साथ।

वेल कहते हैं कि चाहतों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है। कई बार जरूरत वाली गली से होकर आपको मुड़ना पड़ता है। कहते हैं कि जब बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। किसी संकरी गली के मोड़ पर, किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर, कभी कहीं पगडंडियों पर रुकी सी, अटकी हुई सी, हैरान परेशान सी दिखती हुई, कुछ कहने की कोशिश सी करती हुई, कभी डहेलियां फूल सी खिली खिली, तो कभी सूखे पत्ते की तरह मुरझाई सी। उस ऊंचे आसमां की ओट में छुपने की कोशिश में देखो तो जरा जरा लड़खड़ाई सी। वो कहते हैं ना कि बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है। ऐसा ही लंबा सफर आपका भी होना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना तो मन में ढेर सारी हलचल चल रही होती है कि आज का दिन कैसा जाएगा, आज बॉस मुझसे खुश रहेंगे या नहीं, है ना। लेकिन कई बार क्या हम उस शुरुआती बात पर ध्यान नहीं दे सकते कि हमें अपनी शुरुआत अच्छी रखनी है। अगर आप पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव मोड से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो फिर सब अच्छा ही होगा। सुप्रभात, सुन रहे हैं आरजे गौतम के साथ।

वेल, अक्सर मेरी मम्मी कहा करती हैं कि ऊपर वाला भूखे पेट उठाता तो है लेकिन सुलाता नहीं। रिकॉल करना चाहूंगा, मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फूड वेस्टेज पे हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। उतना ही ले थाली में जितना वेस्ट ना हो। फूड वेस्टेज पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ना जाने हमारे देश में हर रोज कितना टन खाना वेस्ट होता है ना। और ऐसे में ये बेसिक नीड्स हैं, इन्हें तो पूरा करना ही है। और इसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली दिलवालों की, हर दिल्ली में राष्ट्रीय क्रिकेट लीग हंगर फ्री भारत मिशन के साथ हो रही है, जहां पर अलग कम्युनिटी के लोग, चाहे वो किसान हो, छोटे बच्चे हो, ट्रांस हो, विमेन डेफ टीम हो, सब दिल्ली पुलिस की टीमों सब साथ मिलकर आ रहे हैं। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 22 से 25 अक्टूबर तक एक अनूठे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट में हर 10 रन को 100 लोगों के भोजन वितरण से जोड़ा गया है। यानी कि अगर कोई भी बल्लेबाज 10 रन लगाएगा तो 100 लोगों को खाना पहुंचाया जाएगा। कितनी अच्छी मुहिम है ना। इसमें आप लोग भी जुड़ सकते हैं और एंट्री एकदम फ्री है। तो ऐसी छोटी छोटी मुहिम जिन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो हंगर फ्री भारत हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन किसी का बेहतर करूंगा।

बस प्यार बांटते चलिए लाइफ में। कितना मुश्किल हो गया है ना आजकल, हम अपनी उलझनों में इतने उलझे जा रहे हैं कि हमें लगता है कि मेरा क्या, मेरा बेहतर कैसे होगा। मैंने आपको हंगर फ्री भारत के बारे में बताया ना कि किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भूख मुक्त भारत का यह सपना, लेकिन अक्सर दूसरे की थाली में हमें लड्डू बड़ा नजर आता है और अपनी थाली कम छोटी। ऐसा लगता है कि उसकी थाली में लड्डू तो है लेकिन हमारी थाली ग्रैंड होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हर किसी की लाइफ में एक अहम किरदार हो, कभी कभी दूसरों की लाइफ में सपोर्टिंग एक्टर का किरदार भी निभा कर देखिए। कोई पूछे तुमसे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक दोस्त था पक्का कच्चा सा, एक झूठ था आधा सच्चा सा, जीवन का एक साथी था जो पास होकर भी पास नहीं। कोई पूछे तुमसे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक ख्वाब था टूटा बिखरा सा, एक दर्द था मीठा गहरा सा, बारिश की पहली बूंदों में एक आंसू था वो ठहरा सा, वो एक मौसम था जो बीत गया, वो एक वादा था जो टूट गया, भीड़ में चलता साया था वो जो हाथ से तेरे छूट गया। कोई पूछे तुमसे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। कोई पूछे तुमसे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। हमेशा जीरो से हीरो बनने वाला तो ये सफर है, लेकिन कई बार दूसरी की स्टोरी में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का किरदार भी निभाकर देखिए।

अगर है खराब तो उसे खराब कहिए, जरूरी नहीं हर किसी को जनाब कहिए। कागज के फूलों से महक ना आएगी, इसलिए जो गुलाब है उसे गुलाब कहिए। अंधेरी रातों में जुगनू ही सूरज है, फिर उस घड़ी को ही आफताब कहिए। जो नींद टूटने पर भी रह जाए आंखों में, उसे ही सच में कोई ख्वाब कहिए। और अगर मैं कहूं कि ख्वाब एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। गुड मॉर्निंग हो गई आपकी या नहीं हुई? 102.6 FM। अगर मैं कहूं, मैं क्या कहूं, अब कहने का समय तो आपका है।

कहने सुनने वाली बात तो ठीक है, जताने वाली बात भी ठीक है, लेकिन मनाने वाली बात थोड़ी सी गहरी है। जी हाँ, खुद को मनाने के लिए कहीं ना कहीं

सोचता हूं हर वक्त हर सफर में कि मैं क्या चाहता हूं जिंदगी से। दुख तो इस बात का है कि मैं और मैं क्या चाहता हूं के बीच ये जिंदगी बेमतलब सी खर्च हो रही है। कह देना कि गुजरता वक्त है जनाब, लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। वो वजह क्या है जिंदगी में, आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी कि मन के जीते जीते और मन के हारे हार छेड़ दिए हमने आपके दिलों की तार। 102.6 FM, दिल से दिल तक।

0: सी तेरी बोली, कु
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेल नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एंड कॉपी टू ऑल, आपका होस्ट आपका दोस्त आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर है सुप्रभात लेकर। और अक्सर ना लोग कदर करना भूल गए हैं और अपनी मस्ती में कहीं ना कहीं एक अलग ही झूले पे झूल गए हैं। ऐसा लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं, आज पैर जमीन पर नहीं टिकते मेरे तो, है ना। आपको भी लगता होगा ना लाइफ में कि बहुत सारे लोग आपकी कदर नहीं करते। तो सूरज हर सुबह निकलता है, उसे है चिंता नहीं होती कि कल कितने लोगों ने उसकी रोशनी की कद्र की थी। वो बस अपना काम करता है और उसका काम है रोशनी बांटना। सीख यही है कि लोगों की तारीफ या आलोचना पर नहीं अपने कर्म पर ध्यान दे, आपका काम ही आपकी पहचान बनाएगा। और हर रोज अपने आप से बोलें आईने के सामने कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूं, है ना। तोड़ दे फोड़ दे सबको पीछे छोड़ दे, जैसे कि मैं बोल के आता हूं अपने आप को। तो आप भी बोल दो ना जरा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, अपने आप के बारे में अच्छा अच्छा बोलिए, है ना। अपने तक रखें।

बिल्कुल, कई बार कहने सुनने वाली बात नहीं, कई चीजों को अल्फाज कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अपने शब्दों में उस कहानी को पिरोने की कोशिश कीजिए। अपनी हैसियत से बड़े सपने देखिए, क्या पता ऊपर वाला सुन रहा हो और कह दे तथास्तु, है ना। जाकिर खान ने कहा, एक चींटी अपने से कई गुना बड़ा दाना लेकर दीवार पर चढ़ रही थी। वो बार बार गिरती, लेकिन हर बार फिर कोशिश करती, फिर गिरती, फिर कोशिश करती, आखिरकार वो ऊपर पहुंच ही गई। मतलब ये है कि सफलता हमेशा ताकत से नहीं मिलती, कभी कभी लगातार कोशिश करने से मिलती है। कॉन्टिन्यूटी इज द की। और वो सपने ही क्या जो अगर आप लोगों से शेयर करें और वो हंसे ना, क्योंकि जिस जिस पर ये जग हंस

कैसा है, उसी ने तो इतिहास रचा है। गलत कह रहा हूं तो बताइए, तो आप कहां गुम हैं? गुम हो जाइए हमारे साथ दिल से दिल तक और अपने सपनों में भी। वैसे सपने तो अब खुली आंखों से देखिए। जागने का समय हो गया है, जागो मोहन प्यारे, दिखा दे एक बार फिर से दिन में तारे।

करना चाहिए तो आपका वो साहस, वो उत्साह, वो एक्साइटमेंट, किसी दिन अपने चेहरे की थकान लिखूंगा लेकिन हिम्मत का वो मुकाम लिखूंगा। जिस दिन मैं लिखूंगा भीड़ को भ्रम लिखूंगा, एकांत को सत्य लिखूंगा, दोस्ती में अगर धोखे खाया दोस्ती को फरेब लिखूंगा, प्रेम को छल लिखूंगा, रिश्तों को षड्यंत्र लिखूंगा, फिर तोड़ दूंगा अपनी कलम और खुद को रिहा लिखूंगा। अरे किससे रिहाई मांग रहे हैं? जरा अपने दिल की तरफ ध्यान तो दीजिए, वो कहीं नहीं गया था, वो आपके पास ही है। जिस दिन की इस दिल ने खुद से मोहब्बत, तो जिंदगी भी ये हंसी हो गई। और दिल ने कहा समझाकर कि मैं तेरे पास

कहीं गया ही नहीं। बस तूने ज्यादा थोड़ा सा सेंटी हो के दिल की चीजें दिमाग पे लगा ली। लाइफ में लोग आएंगे, कुछ सिखाने के लिए आएंगे और कुछ साथ में अपने पन के साथ रह जाएंगे। तो ऐसे में ये मत सोचिए कि मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, मैं तो ऐसा था नहीं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, लर्निंग है। जरूरी नहीं कि बादाम खाकर ही दिमाग आए, कई बार धोखे खाकर भी दिमाग आ जाता है। वेल, रिहा लिखूंगा, लेकिन रिहाई मेरी भी होने वाली है स्टूडियो से, बिकॉज निखिल कुमार आपके साथ जुड़ने वाले हैं। वैसे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि साथ निभाते चलिए हमारा 102.6 FM, दिल से दिल तक, और फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, लेकर इजाजत दीजिए, क्योंकि कई बार वापस आने के लिए जाना भी पड़ता है, और जाएंगे नहीं तब तक आप कदर कैसे करेंगे, अपनी कदर कीजिए। और मुस्कुराते रहिए,

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति गी पामला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन की यात्रा के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। उन्होंने सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कालाकोट और राजौरी सेक्टरों का दौरा कर परिचालन तैयारियों तथा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान जताया। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने की संभावना है। नोवाक जोकोविच ने बीजिंग में 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीता और भारत ने 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

भाई चलते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चलते हैं तभी किसी काम की ओर अग्रसर होते हैं, तभी कोई काम आपका हो पाता है। और इसीलिए हम भी चलकर आ गए हैं आपके पास लेकर के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन निखिल। और प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। वर्ष 1840 में आज का दिन था जब विलियम सेकंड नीदरलैंड्स के राजा बने थे। वर्ष 1868 में आज के दिन ही अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय खुला था। इसमें 412 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ और ये उस समय की सबसे बड़ी संख्या थी। वर्ष 1919 में आज के दिन ही गांधी जी की नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और वर्ष 1942 में आज के दिन ही अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की थी। वर्ष 1952 में आज के दिन ही चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी। वर्ष 1959 में आज के दिन ही सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान ल्यूनर 3 द्वारा चंद्रमा के छिपे हुए हिस्से की तस्वीर ली गई। वर्ष 1977 में सोवियत संघ ने चौथे संविधान को अंगीकार किया था। और आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई थी। वर्ष 2000 में आज का दिन था जब जापान में मानव क्लोनिंग को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। और आज के दिन ही वर्ष 2004 में जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का मजबूती से समर्थन किया था। तो ये थे ऐसी प्रमुख घटनाएं जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान बनाई हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो 102.6। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए, एंजॉय कीजिए इसे।

जी हाँ, प्यार का रिश्ता ये यूं ही बढ़ता रहेगा, आगे कारवां भी आगे चलता रहेगा। और इसी क्रम में आपको बताते हैं कि हम मना रहे हैं वन्य जीव सप्ताह, जो कि भारत में मनाया जाता है 2 से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में।

ये ऐसा अवसर है जिसका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों, पक्षियों, पेड़ पौधों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। इस सप्ताह के दौरान वन्य जीवों के महत्व, जैव विविधता, पर्यावरण संतुलन और प्रकृति के संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। हम सभी जानते हैं कि वन्य जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ऐसे में भोजन श्रृंखला और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारी भी हो जाती है। भारत में जिस तरह से बाघ, हाथी, गैंडा, शेर, तेंदुआ, हिरण और अनेक दुर्लभ पक्षी तथा वन्य जीव पाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वनों की कटाई, शिकार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण इन सभी के सामने समस्या आ जाती है। तो ऐसे में हम सभी का कर्तव्य है कि वन्य जीवों और जंगलों के प्रति हमें एक ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जहाँ पर उनकी रक्षा हो, अवैध शिकार ना हो, वन्य जीव की तस्करी ना हो और पर्यावरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और श्रोताओं, आपको बता दें कि हम मना रहे हैं विश्व अंतरिक्ष सप्ताह भी, जो हर वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में इसके मनाने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष तकनीकी और मानव जीवन में उनके महत्व के बारे में लोगों, विशेषकर विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम किया जाए। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत

संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा था, जबकि 10 अक्टूबर 1967 को बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू हुई थी। और ये जो सप्ताह है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, इस दौरान विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों में अंतरिक्ष विज्ञान पर बातचीत होती है, कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रदर्शनी होती है, प्रश्नोत्तरी, तारामंडल के कार्यक्रम और अनेक वैज्ञानिक चर्चाएं भी आयोजित की जाती हैं। और हमारे लिए खासतौर पर एक भारतीय होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि सप्ताह का विशेष महत्व है, क्योंकि इसरो के माध्यम से हमने चंद्रमा, मंगल, सूर्य, पृथ्वी के अध्ययन सहित कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में सफलता प्राप्त की है। तो ऐसे में अगर लोग भी आने के लिए प्रेरित होते हैं तो वाकई ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आपके दोस्त अर्जुन निखिल के साथ।

श्रोताओं को बता दें कि आज हम मना रहे हैं विश्व कपास दिवस, जो कि हर वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कपास के महत्व, इसके उत्पादन, व्यापार और इससे जुड़े किसानों तथा श्रमिकों के योगदान के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना। कपास को अक्सर सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, क्योंकि ये वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा है और अनेक देशों की अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि विश्व कपास दिवस पहली बार 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया था। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से विश्व कपास दिवस के रूप में इसे मान्यता दी। इस अवसर पर कपास की खेती में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल तरीकों, किसानों की आय बढ़ाने, बेहतर तकनीक अपनाने तथा कपास के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाती है। भारत के अगर हम बात करते हैं, भारत का जिक्र करते हैं, तो विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में हमारी गिनती होती है और हमारे यहाँ के कपास की खेती से लाखों किसानों को आजीविका मिलती है। इसीलिए ये दिन जो है, हमें हमारे किसानों के परिश्रम का सम्मान करने, टिकाऊ कृषि प्रणालियों को अपनाने और कपास उद्योग के विकास के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो आपके मन को छू जाएगा।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

और श्रोता आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है अरुण बाली की, जो भारत के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों और अपने अभिनय से उन्होंने विशेष पहचान बनाई। उन्होंने अपने लंबे अभिनय करियर में ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और धार्मिक भूमिकाओं सहित कई तरह की भूमिकाएं निभाई थी। नीम का पेड़, कुमकुम, चाणक्य, स्वाभिमान जैसे टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति देखी गई। वहीं थ्री इडियट्स, रेडी और पानीपत तथा सम्राट पृथ्वीराज जैसे फिल्मों में भी उन्होंने अपने की छाप छोड़ी। उनकी गंभीर आवाज और प्रभावशाली अभिनय के कारण दर्शकों के बीच में उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली थी। और आपको बता दें कि अरुण बाली ने अपने करियर के अंतिम दौर में भी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया था। आज भी उनके योगदान को काफी याद किया जाता है।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं बेगम अख्तर को, जिनकी आज जयंती है। वे भारत की जानी मानी गजल गायिका, ठुमरी और दादरा गायिका थी। उनका वास्तविक नाम था अख्तरी बाई फैजाबादी और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की और अपनी भावपूर्ण आवाज़ तथा अनूठी गायन शैली के कारण भारतीय संगीत जगत में उन्होंने अपना विशेष स्थान बनाया था। उन्हें मल्लिका गजल के नाम से भी जाना जाता है। बेगम अख्तर ने अनेक प्रसिद्ध गजलों, ठुमरियों और दादरों को अपनी आवाज़ दी और हिंदी तथा उर्दू संगीत को लोकप्रिय बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपको बता दें कि भारतीय उपशास्त्रीय संगीत और गजल गायकी के क्षेत्र में उनके योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और मरणोपरांत पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। एक ऐसी गायिका जिसने अपने गायन से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया, उसे हम आज याद कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं पंडित अरुण भादुड़ी को भी। आज उनकी भी जयंती है। वे भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीत गुरु थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने मोहम्मद ए दाऊद और मोहम्मद सगीरुद्दीन खान से प्राप्त की और आगे चल करके ITC संगीत रिसर्च अकादमी में उस्ताद इश्तियाक हुसैन खान और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ बांग्ला गीतों, भजनों, ठुमरी और अर्धशास्त्रीय संगीत के लिए भी वे प्रसिद्ध रहे थे। उन्हें 2014 में बंग विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और उनकी मधुर आवाज़ और विशिष्ट गायन शैली आज भी विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। फिलहाल ये गीत आपके लिए रेनबो पर।

दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं दुर्गा भाभी को, जिनका वास्तविक नाम था दुर्गावती देवी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक साहसी क्रांतिकारी और भगत सिंह तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ी कार्यकर्ताओं में से एक थीं। वे क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी थीं और इसी कारण अपने क्रांतिकारी साथियों के बीच उन्हें सम्मानपूर्वक दुर्गा भाभी कहा जाता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। और आपको बता दें कि जब वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह को पुलिस से बचा कर ले जाना था, तब दुर्गा भाभी ने अपनी जान जोखिम में डालकर भगत सिंह के साथ यात्रा की और उन्हें सुरक्षित निकलने में सहायता की थी। दुर्गा भाभी ने अनेक क्रांतिकारियों को आर्थिक और अन्य प्रकार से भी सहायता दी थी और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया और लखनऊ में विद्यालय स्थापित भी कराया था। उनका जीवन महिलाओं के बीच में साहस, त्याग और देशभक्ति की भावना को प्रेरणा आगे ले जाता है। फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पर आप सुनेंगे थोड़ी सी और भी जानकारी, उसके बाद होंगे गीत। आप बने रहें रेनबो पर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हर्षो, तो आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं जहीर खान को, जिनका आज जन्मदिन है। वे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे और वर्ष 2000 में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। जहीर खान अपने स्विंग, गेंदबाजी, रिवर्स स्विंग और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के लिए 92 टेस्ट मैच, 201 दिवसीय मुकाबले और 17 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाजों में शामिल थे। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 21 विकेट लेकर के संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लिए थे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 से अधिक विकेट हासिल किए थे। जहीर खान ने वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और बाद में उन्होंने एक कोचिंग और मेंटर से जुड़े काम के एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में क्रिकेट को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच में जो पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हुआ लखनऊ में, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में, उसमें भारत ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी। वेस्टइंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और एक गेंद में अपने सभी विकेट खो करके 171 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 15वें ओवर में श्रेयस अय्यर के, जो कप्तान है टीम के, शानदार 102 रन की बदौलत 2 विकेट खोकर के 172 रन बनाए और इस मैच में जीत हासिल उन्होंने कर ली थी। फिलहाल आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत अनुमत 375 कार्यों की सूची अधिसूचित की है। विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़कर 7.1% किया। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कालाकोट और राजौरी सेक्टरों का दौरा कर परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण और कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान जताया। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने की संभावना है। नोवाक जोकोविच ने बीजिंग में 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीता। यह जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और भारत ने 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर। कहते हैं ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमान तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। जी हाँ जनाब, जहां जाओगे वही हमें पाओगे, और ये प्यार है हर दिन परवान।

मतलब किसी का भी डर नहीं, तेरे जी में आया तू कर वही, और जीना तेरे बिना जचे मुझे ऐसे जैसे बिना चीज के बर्गर नहीं। यानी यू एंड मी मिलके बने हम, आजू बाजू रहेगा ना कोई भी कम, ये साथ तेरा मेरे लिए जैसे डिस्काउंट, जितना मिले उतना कम। वेल डिस्काउंट का जमाना है, लेकिन लेकिन लेकिन अपने बॉस से कहीं ना कहीं डांट भी तो खाना है ना। कई बार हाई रेटिंग नहीं दे पाते ना आपके बॉस भी, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, दिल्ली का वेदर 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना।

कहा जाता है कि तेज रनों की गुहार हो और चढ़ता हुआ बुखार हो, क्रिकेट में कटर और ब्रेड पे बटर, ब्रेकफास्ट की याद आ गई ना। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि उतना ही ले थाली में जितना ना बर्बाद हो। जी हाँ, मैं रिकॉल करना चाहूंगा, मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भोजन बहुत ही ऐसी एक महत्वपूर्ण चीज है जो जितना प्लेट में हिसाब से परोसी जाए उतना ही ठीक है, यानी कि उतना ही ले थाली में जितना ना जाए नाली में। और दिल्ली में इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय क्रिकेट लीग हंगर फ्री भारत मिशन के साथ हो रही है और अलग अलग कम्युनिटी के लोग साथ आ रहे हैं, चाहे वो किसान हो, छोटे बच्चे हों, ट्रांसजेंडर्स हों या फिर वुमेन डेफ टीम हो। तो ट्रांस टीम भी होगी और दिल्ली पुलिस की टीम भी होगी। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 22 से 25 अक्टूबर तक एक अनूठे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में हर 10 रन को 100 लोगों के भोजन वितरण से जोड़ा गया है, यानी कि किसी का बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन करके देखिए काफी अच्छा लगेगा आपको, है ना। और स्वामी रामदेव, राकेश बेदी और अन्य हस्तियां इस सामाजिक मुहिम में शामिल होंगी। एंड इस संस्था के द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों और बाढ़ पीड़ितों को भोजन वितरित किया जाता है एंड बहुत वक्त लगा है ये किरदार बनाने में भी इन्हें। एंड मैं आपको बता दूं, यह आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जाएगा। और इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि यहाँ केवल खेल नहीं होगा बल्कि भूख के खिलाफ एक सामाजिक संदेश भी दिया जाएगा। आयोजक अरविंद कुमार का कहना है कि हम क्रिकेट के माध्यम से समाज की एक अहम चिंता को जागरूक करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ना। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए, जनता जनार्दन के लिए जाना एकदम फ्री है, यानी कि 10 रन अगर कोई क्रिकेटर बनाएगा तो कहीं ना कहीं 100 लोगों तक खाना भी पहुंचाएगा। तो मुझे पता है आप में बहुत सारा जज्बा है पार्टी करने का, लेकिन फूड वेस्टेज कंट्रोल बहुत जरूरी है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा।

आज रात का सीन जरूर बना लेना, लेकिन फूड वेस्टेज पे थोड़ा सा कंट्रोल करना। हाँ जी हाँ, उतना ही लेना थाली में जितना वेस्टेज ना हो, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था हंगर फ्री भारत और राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के बारे में। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आप 22 से 25 अक्टूबर जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस टूर्नामेंट में एक विशेष पहल की गई है, जहां हर 10 रन को 100 लोगों के भोजन से जोड़ा जाएगा। और इसका मतलब यह है कि मैदान पर बनने वाला हर रन जरूरतमंदों के लिए भोजन उपलब्ध कराने का संकल्प मजबूत करेगा। यह पहल क्रिकेट को एक सामाजिक उद्देश्य के साथ जोड़ती है। क्रिकेट हो, एंटरटेनमेंट और सामाजिक सरोकार का ये अनूठा संगम हंगर फ्री भारत, स्वच्छता अभियान भी है और कहीं ना कहीं साफ सुथरा आप अपने आप को रखते होंगे। लेकिन लेकिन लेकिन कोशिश करिए, सज धज के अगर कहीं जा भी रहे ना किसी पार्टी में, तो वेस्ट ना

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी कार्रवाई को समयबद्ध बनाने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इसके जरिए प्रदूषण से जुड़े विभिन्न गतिविधियों की 24/7 निगरानी की जा रही है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ICC में AI आधारित कैमरों, रियल टाइम डेटा विश्लेषण और GPS तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ ही मैकेनिकल स्वीपर्स की लोकेशन और संचालन की भी GPS के जरिए निगरानी की जा रही है। तो सोचिए

जीवन में कहीं ना कहीं सच्चा होना और बच्चा होना बहुत जरूरी है। एक दिन जब मैं खुद पर कविता लिखूंगा, शायद खुद को सबसे समझदार दुनिया को पागल लिखूंगा। अपनी हर हार के लिए हालातों को जिम्मेदार लिखूंगा, अपनी हर जीत के लिए सिर्फ अपना ही कमाल लिखूंगा। कमाल कर दिता। अंतिम पंक्ति में इतना ही लिखूंगा, दूसरों को पढ़ता रहा जीवन भर, खुद को ही पढ़ना भूल गया। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नादान लिखूंगा। एक दिन जब मैं खुद पर कविता लिखूंगा, शायद खुद को सबसे समझ

वेल नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एंड कॉफी टू ऑल। मैं कह भाई कैसे हो सारे, दिखा दे एक बार फिर से दिन में तारे। वेल बता दूं, प्रधानमंत्री सेवा संकल्प गरीब कल्याण अन्न योजना एंड भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य ज़रूरतमंद और गरीब परिवार को खाना उपलब्ध कराकर उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इस योजना से गरीब एवं ज़रूरतमंद परिवारों को महंगाई और आर्थिक कठिनाई के समय भोजन की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है और सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार भूखा ना सोए, है ना। मैंने आपसे शुरुआती दौर में ही कहा था कि मतलब सेवा भाव, और ये सेवा भाव हम ऐसे भी आगे बढ़ा सकते हैं कि हम फूड वेस्टेज पर कंट्रोल रखें, उतना ही थाली मिले जितना हम वेस्ट ना करें, है ना। बहुत जरूरी है, मुझे लगता है हम सब लोग पार्टी विवाह शादियों में या इन हाउस पार्टीज में बहुत ही ज्यादा फूड वेस्ट करते हैं, तो इस पर कंट्रोल करना, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, ये भी हमारा फर्ज है। हाँ, डांस करने के बाद हजम हो जाए तो दोबारा ले लो यार, लेकिन शुरुआती दौर में पूरी प्लेट भरने की क्या जरूरत है। 102.6 FM दिल से दिल तक। और वैसे भी कार्डियो वार्डियो करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो मतलब लिमिटेड ही दिखाओगे और

0: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे,
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका
0: पताका चाय, गजब का स्वाद।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: नींद नहीं आती हर रातों में,
2: रातों को नींद ना आना, कच्ची नींद लगना, नींद का बार बार टूट जाना, ये लक्षण हो सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के। ये एक मनोरोग भी हो सकता है। समय ना गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप 102.6 एफएम दिल से दिल तक। मैं क्या नमस्ते जी ओयाहू। और मॉर्निंग वाली वाइब ऐसी हो जाए ना तो मतलब लगता है पूरा दिन ऑफिस में गिद्दा ही बातें रहेंगे, भंगड़ा ही बातें रहेंगे। ओहो मस्ती है तो मस्ती है, मैं भी स्टूडियो में बैठा बैठा थिरक रहा हूँ, आप भी थिरक जाइए थोड़ा सा, इस बहाने थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। ओ याहू

वेल, सेवा संकल्प अभियान के तहत शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के हैदरपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में निशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का शुभारंभ किया गया है और कैंप में क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य जांच, चिकित्सीय परामर्श और जरूरी मार्गदर्शन की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं और सीएम ने लोगों से कैंप का लाभ उठाने की अपील भी की है। बहरहाल हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ 102.6 एफएम, दिल से दिल तक। जनाब अफसाना बना के भूलने नहीं देंगे, अफसाना बना के भूलना जाना, लेकिन जहां भी जाओगे ऐसा दीवाना नहीं मिलेगा। और हो गई आपकी गुड मॉर्निंग।

कि कुछ इस तरीके से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया कि खुद से मैंने माफी मांग ली और औरों को मैंने माफ कर दिया। वेल, माफी मांगना चाहूंगा बिकॉज जाने का समय आ गया है और मुझे पता है जब भी मैं जाता हूँ आप कहते हैं तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, मैं जाऊंगा तभी तो प्यार देने के लिए। बेशुमार आ रहे हैं निकल

नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड के सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए CBI का दुरुपयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मदरसा शिक्षा आयोग को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। नोवाक जोकोविच ने पेइचिंग में 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और भारत ने पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में कल वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: रोज ही की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसी ही आवाजें सुनाई थी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
1: पूजा,
2: अरे सुन क्यों नहीं रही, मुझे इग्नोर कर रही हो?
3: पता है ये बात अब सबको पता चल गई।
0: मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
4: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज, इबास और स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में, घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
2: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
3: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

और शो तो आपको बता दें, मेरे जाने के बाद आप कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे। तो शालू आपके लिए लेकर के आएंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर, जो आप सुन पाएंगे 10 बजे से। इसके बाद फिर 11 बजे से बॉलीवुड ट्रेल्स का समय रहेगा, जिसे पेश करेंगी मीना जैन। और आपको हम बता दें कि आप सुन सकते हैं वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल शालू के साथ दिन में 12 बजे से। और आपको हम ये भी बता दें कि आज आप सुनेंगे आशियाना स्वाति गुप्ता के साथ में। और फिर रेडियो डॉक्टर में आज खास बातचीत होनी है स्लीप डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी को लेकर के। सुजन राजपूत आपके साथ होंगी। और इस प्रोग्राम में आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, जो कि होम्योपैथ हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, वो भी होम्योपैथ हैं। तो यदि आपको नींद से संबंधित कोई समस्या है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। शाम 4 बजे समय होगा अल्फाजन का, जिसे लेकर के आएंगी स्वाति गुप्ता। और फिर सिटी लाइट्स लेकर के सृजन राजपूत आपके साथ होंगे शाम 5 बजे से। फिलहाल मेरे चलने का समय हो चला है, मैं आपसे लेता हूं अनुमति। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे, लेकिन आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर। सुनते रहें और एंजॉय करते रहें ब्यूटीफुल से ट्रैक्स और जानकारी से भरे हमारे प्रोग्राम। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

आकाशवाणी 10 AM न्यूज हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंप्लीट्स 25 ईयर्स एज द हेड ऑफ अ गवर्नमेंट। द यूनियन कैबिनेट पासेस अ रेजोल्यूशन टू कमेमोरेट दिस लैंडमार्क अचीवमेंट। द गवर्नमेंट नोटिफाइज 375 परमिसेबल वर्क्स अंडर विकसित भारत जी RAMG स्कीम, मार्किंग 41% एक्सपेंशन फ्रॉम द प्रीवियस 266 वर्क्स। Prime Minister Modi interacts with the board of members of the Global System for Mobile Communications Association and says that

0: थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धा।
1: आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: following right in a while, what I'll do is that I'll take a little break and maybe play some messages for you, and then of course we'll be back.
1: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत कानूनी तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित फैसले स्वयं ले सकता है। साथ ही सुसाइडल अटेम्प्ट के खिलाफ सजा भी नहीं होगी। ये हम सबका दायित्व है कि मानसिक बीमारियों का इलाज कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर हो।
2: इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: So that was one little bit for us, and let's continue now. Let's get into the next track. This is all about enjoying, maybe not with fervor, maybe not with a lot of pomp and show, but a sustained, quiet fervor of enjoying life in its all ways, in its different ways, in its ups and downs, in its love. And it's deep emotions, something that's profound and something that's even simple. All brought to you via Paul Anka.

नमस्कार, प्रस्तुत है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस घंटे के हिंदी में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा से देश सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा को सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जनता जनार्दन के आशीर्वाद का परिणाम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसटी राज

शब्बीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मदरसा शिक्षा आयोग को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त किया गया है। ये है आकाशवाणी FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: कौन आया, कौन गया, कहाँ गया, कहाँ से आया, कौन सी आएगी, कब आएगी, किसको अपने साथ लाएगी, कौन एक बार फिर साथ आ रहा है, कौन पहली बार आ रहा है, OMG कितने सारे सवाल एंड जवाब ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो बॉलीवुड ट्रेल्स विद मीना जैन, जो है अपनी श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन।

ऐसा ही कुछ लग रहा है कि किसी क्रिकेट प्लेयर का क्रिकेट की जिंदगी से दिल खली बली हो गया है। वेल, अगर हम बात करें सलिल अंकोला की, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर को बहुत जल्दी गुड बाय कहना पड़ा बिकॉज ऑफ इंजरीज। अर्ली रिटायरमेंट के बाद एक्टिंग करियर को चुना। 2000 में फिल्म कुरुक्षेत्र में काम किया एज डेब्यू पुलिस इंस्पेक्टर, और फिर पिता और उसके बाद 2003 में चुरा लिया है तुमने, लेकिन साथ में टीवी पे काफी काम किया। अजय जडेजा 2003 में फिल्म खेल के साथ सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू किया, पल पल दिल के साथ में भी दिखे थे। शिखर धवन 2024 में रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर कैमियो रोल्स किए इन डबल एक्सएल और हिस्सा बने कई म्यूजिकल वीडियोस के। विनोद कामली भी नजर आए अनर्थ में और पल पल दिल के साथ में। ये सारी बातें क्रिकेटर्स को लेकर क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि राहुल द्रविड़, जो कि पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने एक इशारा किया है क्रिकेट के उस विराट प्लेयर पर जिसका नाम है विराट, कि आने वाले समय में कैमरा के सामने अपना करियर बना सकते हैं, बॉलीवुड फिल्म्स में काम कर सकते हैं। कहते हैं कि विराट कमाल की मिमिक्री करते हैं और कई सारे एड्स में भी वो काम कर चुके हैं, और वो भी अच्छा वाला। वैसे अगर आपको याद हो तो कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि विराट जनरली एक अच्छे एक्टर हैं, लुक्स, फिटनेस, मेंटल हेल्थ में तो अच्छे हैं ही, फील्ड पर धुआंधार बल्लेबाजी और फिर अगर बॉलीवुड में एंट्री ली तो न जाने कितनों को करेंगे क्लीन बोल्ड। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर होल्स। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, कि अगर विराट डेब्यू करते हैं सिल्वर स्क्रीन पर तो किस एक्ट्रेस के साथ करेंगे? क्या अनुष्का शर्मा के साथ फिल्मी जगत में चार कदम साथ चल पाएंगे या फिर

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी। इन्वेस्टिंग का पार्ट

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: कार्यक्रम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और आपके साथ हूँ मैं मीना जैन। और अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि चलिए बताइए गाना आपको याद है, ना कजरी की धार, सुना तो होगा आपने, है ना, कैसे भूल सकते हैं। गाना मन में और भाव में इस तरह से रचा बसा है कि इसे भूला जा ही नहीं सकता। क्यों दोस्तों, पंकज उदास संगीत की दुनिया के वो सुरीले सितारे हैं जिन्होंने अपनी आवाज से कई गानों की जिंदगी बदल दी और उनको सदाबहार बना दिया। कुछ गाने तो ऐसे हैं कि जिन्हें हम उनकी आवाज के अलावा किसी और की आवाज में सोच ही नहीं सकते, और ऐसा ही एक गाना है ना कजरे की धार। अगर किसी और ने गाया होता तो, जैसे किशोर दा या रफी साहब या फिर महेंद्र कपूर जी ने, तो फिर उसका फील ही बदल जाता। जानते हैं दोस्तों 1960 में यही गाना मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था। जी हाँ, 1960 में कल्याण जी आनंद जी के पॉपुलर जोड़ी ने इसे कंपोज किया था और फिर मुकेश जी ने इसे गाया था, लेकिन जिस फिल्म के लिए गाया वो पूरी फिल्म बनी ही नहीं, अधर में ही लटक गई और इसी कारण से ये गाना रिलीज ही नहीं हुआ। और फिर संगीतकार विजू शाह ने इस पुरानी धुन को यूज किया कौन सी फिल्म में, 1994 की मोहरा में। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज ने यह गाना सुपर डुपर हिट बना दिया। ये गाना तब भी जबरदस्त था, ये गाना आज भी जबरदस्त है।

है ना, जबरदस्त दोस्तों। आज भी जब ये गाना सुनते हैं अनायास ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और हम यूं ही ये गाना गुनगुनाने लगते हैं। वेल, अब तैयार हो जाइए एक और जबरदस्त गीत के लिए। अशोका 2011 में दोनों ने साथ में काम किया,

आई कभी खुशी कभी गम, उसमें आइकॉनिक एक्टर्स प्ले किए इन दोनों ने, राहुल और पू। और फिर डॉन द चेस बिगेंस अगेन 2006 में आई और इसमें उन्होंने एक गाने में स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस दी। फिर बिल्लू 2009 में भी एक गाने में डांस किया शाहरुख खान के साथ, गेस्ट अपीयरेंस, यस। और फिर आई राव 1 2011 में और ये इन दोनों की एक साथ लास्ट फुल फीचर फिल्म थी। जी, समझ गए आप, करीना कपूर और शाहरुख खान एक बार फिर 15 साल बाद आ रहे हैं साथ एक गाने में। फिल्म का नाम है किंग, जी हाँ, एक्शन एंटरटेनर फिल्म किंग, और इसका एक गाना है डैडी कूल, और इसमें स्पेशल अपीयरेंस दे रही हैं बेबो। ऐसा कहा जा रहा है कि ये गाना फिल्म किंग का वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स है और मेकर्स इसको यादगार बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस महीने के अंत तक क्रू पहुंच जाएगा साउथ अफ्रीका, जहां इस गाने को शूट किया जाएगा। अब देखना ये है, क्या ये गाना भी इस गाने की तरह आपका और मेरा दिल चुरा लेगा।

ब्रेक पर जाने से पहले सुन लीजिए आज का सवाल। अगर बनना है बॉलीवुड सरताज तो हो जाइए चौकन्ने और सुन लीजिए आज का सवाल। बहुत आसान सा सवाल है। उस बॉलीवुड हिंदी फिल्म का नाम बताइए जिसमें सबसे ज्यादा गाने हैं। उस बॉलीवुड फिल्म का नाम आपको बताना है 9868। बोलूं क्या पूरा? जरूरी है क्या बताना? पता है ना आपको? तो बस आपने मुझे लिखकर भेज देना है उस फिल्म का नाम 9868107070 पर जिसमें है सबसे ज्यादा गाने। इंतजार है मुझे आपके जवाब का।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अरे राम वचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने?
2: अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है बस घोर उदासी, काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं।
3: सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: अरे जरा धीरे धीरे, अरे भाई क्या बरसात कर दी है आपने, स्टूडियो में तो भीग गई मैं पूरी तरह से। थैंक यू मेरे प्यारे लिसनर्स, मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे सवाल का इस तरह से धराधर जवाब देने के लिए। कौन सही कौन गलत बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल बात कर रही हूं एक बहुत ही मजेदार आइटम सॉन्ग, आइटम गर्ल, नोरा फतेही या फिर मलाइका अरोड़ा, अपने अपने जॉनरास में सुपरहिट बने ओनली बिकॉज ऑफ ईदर द आइटम सॉन्ग और बिकॉज दे डांस्ड एज एन आइटम गर्ल। दिलबर हो या फिर साकी साकी, कमरिया हो या फिर अनारकली डिस्को चली, मुन्नी बदनाम है या फिर माही वे, एंड ऑफ कोर्स हु कैन फॉरगेट द फेमस छैया छैया। लेकिन दोस्तों, कुकु मोरे ने 77 साल पहले फिल्म बरसात में पतली कमर है तिरछी नजर है में कैबरे डांस किया था। प्रेमनाथ के साथ जबरदस्त शानदार डांस परफॉर्मेंस थी, शंकर जयकिशन का कॉम्पोजिशन और फिर लता जी और मुकेश जी ने अपनी अपनी आवाज से इस गीत में जादू बिखेरा था। 1940 के दशक की डांसिंग क्वीन थी कुकु मोरे। ऐसा प्रचलित है कि उन्होंने हेलन को स्टार बनने में गाइड किया था, यानी वो उनकी मेंटोर थी। कुकु मोरे पहली फिल्म आइटम गर्ल भी माना जाता है। जबरदस्त डांस मूव

और लचीलेपन की वजह से उन्हें रबर गर्ल भी कहा जाता था। 1949 में रिलीज हुई थी बरसात, राज कपूर और नरगिस प्रेमनाथ के साथ निम्मी की ये डेब्यू फिल्म थी।

मैं चंचल म

0: पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है।
1: मुझे पूरा विश्वास है आज ये गाना सुनने के बाद और ऐसे कल्पना करके कि इस गाने पर किस तरह से कैबरे डांस किया होगा, आप लोग जरूर आज इस गाने को घर पर जरूर देखेंगे। वेल यू मस्ट सी दैट। वेल ये लाइन याद है, तू है मेरी किरण, किरण याद है ना। 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमा घर में इसी लाइन से, इसी तू है मेरी किरण नाम से फिल्म रिलीज होने वाली है। डायरेक्शन है करण रावल का और कल इस फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है। वेल विद लाउड चीयर एंड ऑफ कोर्स काफ़ी तारीफ मिली है सस्पेंस के लिए, एनर्जेटिक अप्लॉज मिला है। ये भी कहा गया है कि मॉडर्न टेक है, ये भी कहा गया है कि ऑब्सेसिव लव का एक ट्विस्टेड वर्जन है ये। अंकित गुप्ता, जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा अहम किरदारों में हैं। रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म का ट्रेलर जी कल हो गया है। डर से भी ज्यादा खौफनाक अंदाज में नजर आ रहे हैं जहीर इकबाल। उनका किरदार है एक साइकोलॉजिकल लवर का, एक पागलपन की कहानी। डबल एक्सएल के बाद जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की जोड़ी तहलका मचाने आ रही है, वो भी डरावना। वेल इस फिल्म के थ्रू, सो आई थिंक लेट्स विश देम गुड लक।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम

फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: कार्यक्रम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, आपके साथ हूँ मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। और नई नवेली फिल्म का गाना फटा पटाका कल रिलीज हो गया था। बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं, कईयों को बहुत अच्छा लगा, कईयों को बहुत बेकार लगा, बट लेट्स सी। ऐसा सुना है और देखा गया है कि यामी गौतम को एकदम नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। गाना जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज किया है और प्रोड्यूस किया है, बोल है वायु के, और मधुबंती बागची ने इसको अपनी आवाज में सजाया है। जॉम्बी पार्टी में यामी गौतम एक नए अवतार में धमाल मचाती नजर आ रही हैं। नई नवेली को डायरेक्ट किया है बालाजी मोहन ने, और मस्ती मिस्ट्री एंटरटेनमेंट से भरपूर इस फिल्म में आदिनाथ एम कोठारे, अनुराग ठाकुर और सुनीता राजवर, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुष्मिता मुखर्जी, प्रदीक चौधरी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ऑफकोर्स लीड रोल में है हमारी यामी गौतम, मोहिनी नाम की नई बहू का किरदार निभा रही हैं। अब स्त्री के जैसे इस फिल्म को भी सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो समय बताएगा।

0: मिलेगी मिलेगी मिलेगी और कंचन को आज सक्सेस मिल गई। हेलो कंचन, कैसी हो?
1: हेलो मैम, नमस्ते, कैसी हैं?
0: कंचन, जो आजू बाजू रेडियो बज रहा है, हाँ आपने धीरे शायद बंद कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अभी भी चालू है, बंद करो। ये बढ़िया है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बिल्कुल हमारी तरह ही म्यूजिकल है कंचन। अच्छा कंचन, क्या कर रही हो?
1: कुछ नहीं मैम, मैं घर में हूँ, हाउसवाइफ, घर में रहते हैं।
0: तो आपके पास तो सांस लेने का भी टाइम नहीं होता होगा, वैसे ही दिवाली आ रही है, बहुत काम होगा आपके पास तो। ये कुछ नहीं, कैसे
1: फिर भी मैं रेमो सुनने का कोई भी चांस नहीं छोड़ती, मैं सारा दिन
0: छोड़ ही नहीं सकते, दिन भर का साथी है, चाहे आप काम कर रहे हैं या चाय की चुस्की ले रहे हैं, रेनबो तो बजना ही चाहिए, फुल टू एंटरटेनमेंट है, इनफैक्ट इन्फोटेनमेंट है।

0: अच्छा आप ये बताइए, क्या आप इस फिर जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब जानती थी या आपको ऑनलाइन ढूंढना पड़ा? सच बोल सकती हैं?
1: झूठ नहीं बोलना मुझे, मैंने ना गूगल से ही पूछा था।
0: ठीक है ठीक है, लेकिन मुझे ये आपकी तारीफ करनी पड़ेगी कि मैंने 11:26 पे पूछा था, 27 पे दो जवाब आए, दोनों गलत थे, 28 पर तीन जवाब थे, उसमें से दूसरा आपका था। एक्चुअली आज पूजा कोमल ने फोन नहीं उठाया इसलिए आपका चांस लगा, सबसे पहले उनका सही जवाब था उसके बाद फिर आपका। क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें 72 गाने होंगे?
1: नहीं,
0: है ना। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारा सवाल था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सबसे ज्यादा गाने हैं। फिल्म का नाम है इंद्रसभा और उसमें 72 गाने हैं। तो क्या लगता है कोमल, अब आज ये जाने के बाद ये फिल्म देखोगी?
1: जी मैं अब तो ढूंढ के ही देखूंगी।
0: फिर कभी अगर आपसे बात करने का मौका मिला तो जरूर बताना कि फिल्म आपको कैसी लगी और क्या सारे गाने सुने या एक आध बीच में छोड़ भी दिए?
1: नहीं मैं अब तो मैं पूरे देखूंगी।
0: क्या बात है। पर कोमल मुझे ऐसे आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप बहुत ही मस्त जबरदस्त हो, बिल्कुल हमारे आकाशवाणी एफएम रेनबो जैसी। तो बस भगवान से प्रार्थना है कि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे और आप यूं ही हंसती खिलखिलाती गुनगुनाती रहे। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, हैव अ फैंटास्टिक डे।
1: मैम मैं कल भी सरताज बनी थी।
0: अजी देखिए आप अपनी जिंदगी की सरताज ही है, आप हर रोज की सरताज है, तो आपको डबल ट्रिपल बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों देखो क्या बात है, कल भी सरताज थी और आज भी बनी है। बस इतना बता दूं, जो हाउसवाइफ से कहती है ना कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रही, घर पर ही हूँ, हाउसवाइफ हूँ, भाई ऐसा ना कहें, आप घर पर हैं तो सबसे ज़्यादा काम तो आप ही कर रही हैं। एनीवेज जवाब आपने जान लिया, जिन जिन लोगों के जवाब आए हैं मैं बताऊँगी इस गीत के साथ साथ। धूम तो मचनी चाहिए कंचन के लिए।

सलीम मलिक, धर्मवीर, सुहानी, तरुण कोहली और राजकुमार जी, समझ गए होंगे कि आप सब के जवाब गलत थे। आप सब ने एक ही नाम दिया, हम आपके हैं कौन, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया, आपने हमारे क्वेश्चन को वैल्यू किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सही जवाब 11:28 पे था पूजा और कोमल आयुष का, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था, हरिनगर से जवाब था इंद्रसभा, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए चांस आज फिर मिला कंचन को। कंचन, आपका भी जवाब बिल्कुल सही था और 11:28 पर ही मुझे आपका जवाब मिल गया था। सही जवाब देने वालों में से प्रवीण चौहान एमपी से, सुरेश लुधियाना से, फिर जुल्फिकार साहब बिहार से, संजय खत्री साहब अंकोला से, और यस ऑफ कोर्स मिसेज धर्मवीर भाटिया आप भी, और ये हैं मुकेश सिन्हा, और उसके बाद है उमेश कुमार, मनोहर शिंदे, मोहम्मद फुरकान साहब, ऋषु कटारिया एंड सुदर्शन मुखी, अनीता एंड सिमरन मुखी। वैसे आप दोनों से मुझे थोड़ी जल्दी की उम्मीद थी कि आपका जवाब थोड़ा जल्दी आएगा, थोड़ा सा लेट आया, कहीं और काम में बिजी थे या आज आपने सोचा कि चलो किसी और को मौका दिया जाए बनने के लिए। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और जाने से पहले एक और अगर न्यूज़ आपके साथ शेयर कर लूँ तो कैसा रहे, और वो खबर कुछ इस तरह से है कि आयुष्मान खुराना, जी हाँ, हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं, उड़ता तीर और ये प्रेम मोल लिया है, एक और उनकी फिल्म फ्लोर पे जिसका नाम है मू पापा, और इनको अब लीड एक्ट्रेस मिल गई है। बंदिश बैंडेड की वेब सीरीज की लीड श्रेया चौधरी को फाइनल कर लिया गया है इस फिल्म के लिए एज लीड एक्ट्रेस। वैसे श्रेया का सिल्वर स्क्रीन पर ये डेब्यू फिल्म होगा, और समीर कर रहे हैं इस फिल्म का डायरेक्शन, और 2027 यानी कि फरवरी 2019 में आशा है फिल्म के रिलीज होने की, और वैसे 27 नवंबर 2026 में ये प्रेम मोलिया रिलीज होने वाली है। फिल्म सुरजर बजात्या की है और हिमेश रेशमिया का इसमें संगीत है, और इसी के साथ अब मैं आपसे लूंगी इजाजत, क्योंकि कोई धीमे धीमे दबे पांव स्टूडियो में एंटर कर चुका है एक बार फिर मजेदार संगीत का पुलिंदा अपने साथ लेके, नाम है शालू, सुना ही होगा। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत इस आशा के साथ कि आपको आज का बॉलीवुड ट्रेल्स पसंद आया होगा। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय। वैसे बता दूं, फिर मिल रही हूं आपसे मैं थोड़ी ही देर में।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: नींद नहीं आती है रातों में।
2: रातों को नींद ना आना, कच्ची नींद लगना, नींद का बार बार टूट जाना, ये लक्षण हो सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के। ये एक मनोरोग भी हो सकता है। समय ना गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: Fine, Akashwani Rainbow, and the next part of the show is all ready to roll out for you. Before that, I have to say the much needed hi, hello, and thank you to our lovely listeners. Roland has written in, Dolly has written in, Rajkumar from Trichy has written in. So thank you, thank you, thank you so much. There's another little friend here. And this is Hitendra Das from Assam. Hello, Hitendra, it's been a long time. So nice to have you here with us again. So my hellos have gone out to all our lovely friends. Their hellos have come in to us. So what shall we do? Yes, we'll roll into the next track.

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: रोजी की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसी ही आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
2: पूजा,
3: अरे सुन क्यों नहीं रही, मुझे इग्नोर कर रही हो?
4: पता ही बात अब सबको पता चल गया।
1: मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
5: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज इबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में, घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
7: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
6: पताका चाय, गजब का स्वाद।
8: Right there. So the messages from your end are now waiting to unfurl.
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: Okay, so let me just take them one by one. Dolly has written in, and all I can say is thank you, dear Dolly. You were with us in the previous show also, so thank you for coming back again. Laksha has written in from Delhi, and he is enjoying the show. He enjoys being with us on the air. Thank you so much, Laksha. Your kind words are indeed heartwarming. Really, really grateful and so touched. Hitendra has written back and he says that he's writing in from Assam. Hitendra, I know that already, and you're a regular listener, and it's always lovely to have you with us. So I think now I shall stop talking, because the name of the next track is No Time to Talk. Like I said, we've already entered the second half of the show, so maybe the presenter talk time can go down a little and the musical talk time can grow a little.

0: And now, a little messagey break, and then we'll be right back into the show that's all about not letting things get to us, just playing it nice and warm, cool, play it cool.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

प्रस्तुत है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के हिंदी में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलाम आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। भारत ने जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त किया गया है। ये थे अब तक के हिंदी में मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: एक नए सतरंगी अंदाज में हम आपके साथ आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। आप सभी सपने देखते हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने से पहले बहुत सी तैयारियां करनी होती है, और उन तैयारियों में सबसे पहले एक अच्छा रिज्यूमे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग एन इम्प्रेसिव रिज्यूमे। एक अच्छा रिज्यूमे कैसे तैयार किया जाए, आपके मन में अक्सर ये सवाल उठता है। तैयारियां तो मैंने बहुत की, उम्र भर पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स हासिल किए, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये नहीं पता कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे तैयार किया जाए। तो मन में है अगर आपके सवाल, तो आपको बता देते हैं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर आनंद सेन गुप्ता, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। मिस्टर आनंद सेन गुप्ता कार्य काउंसलर हैं, दिल से पैशन से, क्योंकि यही चाहते हैं कि ये सभी का उत्थान करें अपनी नॉलेज के जरिए, अपनी विजडम के जरिए, और नित्य प्रति पढ़ते लिखते रहते हैं। वैसे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ये कार्य कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति का पैशन उसे उस रास्ते पर ले जाता है जिस रास्ते को उसका इंतजार होता है। तो अगर आप भी एक रास्ता है ना, तो चुन लीजिए, सुन लीजिए हमें। हम हैं आपके साथ एफएम रेनबो पर, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आपसे बस इतनी सी गुजारिश कि आप हमसे संपर्क करें। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2342-1080, या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 2342-1084 इन नंबर्स के जरिए। और दिल्ली के बाहर के श्रोताओं को एसटीडी कोड 011 लगाना होगा, 011, या फिर आप हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं 9868107070 पर। तो सबसे पहले आइए हम स्वागत करते हैं मिस्टर आनंद सेन गुप्ता का, जिनके माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जानने के साथ साथ आप ना लिखते भी रहिए, क्या कहते हैं मिस्टर आनंद सेन गुप्ता कि एक अच्छा रेज्यूमे किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर आनंद सेन गुप्ता।
3: थैंक यू, धन्यवाद जी।
2: अक्सर मन में ना बहुत सी दुविधाएं उठती हैं जब हम एक रेज्यूमे तैयार करते हैं, क्या लिखें, कैसे लिखें, कौन सी बात लिखें, कौन सी बात ना लिखें, और इसके चलते कभी कभी हम अपने रेज्यूमे को खराब कर लेते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके मायने में, आप इतने सालों से कार्यरत हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, और आपके सामने तो ना जाने कितने ही रेज्यूमे रोज आपको देखने को मिलते होंगे, तो वो कौन सा एक ऐसा रेज्यूमे होता है जो आपकी आंखों को भाता है?
3: थैंक यू मैम, गुड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि रेज्यूमे और सीवी में डिफरेंस क्या होता है।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि जो करिकुलम वीटे, जो जिसका फुल फॉर्म है सीवी का, वो एक लैटिन वर्ड है। रेज्यूमे एक शॉर्टर फॉर्म होता है उसका, उसके स्पेसिफिक टू अ जॉब स्किल या जॉब होता है, जबकि सीवी आपके पूरा कैरियर हिस्ट्री होता है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। बाकी रिज्यूमे ये आपका डिक्शनरी डेफिनेशन है। पर आजकल के जमाने में क्या हो गया, कुछ देशों में यूएस में जैसे रिज्यूमे बोलते, सीवी नहीं बोलते, कुछ जगह सीवी और रिज्यूमे सेम होता है
2: जी।
3: तो आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि आप जो कहां के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एंट्री लेवल पे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, स्पेसिफिक है किस चीज के लिए कर रहे हो। आपका बेसिक एम होना ये चाहिए, आपके जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जो आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग योर एजुकेशनल, आप अगर एक्सपीरियंस हो तो इसके आपके जॉब प्रोफाइल, वो आपके उभर के आना चाहिए। और फिर आगे ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन में बताऊंगा आप कैसे उसको इम्प्रेसिव बना सकते हो आइटरेशन से, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए।
2: जी, बातें बहुत सारी हैं जानने वाली समझने वाली, तो आइए खुद को निखार लेते हैं। और जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा रेज्यूमे हमारी आइडेंटिटी होता है, हमारी पहचान होता है, जिस तरह से हम अपने रेज्यूमे को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी अमिट छाप छोड़ जाएंगे, पढ़ने वाले को समझ आ जाएगा कि हम कौन है। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं?
3: एब्सोल्युटली, क्योंकि आपका जो पहला इंटरेक्शन होता है जॉब सर्च में विद द रिक्रूटर, विद द कंपनी, आपका रिज्यूमे होता है। आज रिज्यूमे के वो अगर इम्प्रेसिव होगा, आपका छाप उसमें छोड़ना चाहिए जी, और उसको पता लगना चाहिए कि ये दिस कुड बी अ प्रोबेबल कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए।
2: जी, हम जीवन में कुछ भी चाहे क्यों ना करना चाहते हो, लेकिन अगर हम खुद को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपने रिज्यूमे के माध्यम से दुनिया को नहीं बता सकते हम कौन है, तो हमारा पढ़ना लिखना या फिर यूं कह लीजिए इतना मेहनत करना शायद बेकार चला जाएगा।
3: Absolutely agreed.
2: और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें लगता है कि वो जो कैंडिडेट हमारे साथ था उसका सिलेक्शन क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन मेरे मार्क्स उससे ज्यादा है।
3: मार्क्स ऑलवेज डिसाइड नहीं करता, ठीक है, मार्क्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको एंटायर प्रोसेस देखना है, आपका रिज्यूमे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, आपका स्टार्ट ही अगर गलत है तो खत्म होना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आपका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, आपका राइट पाथ पे होना चाहिए, आपको ट्रुथफुल होना पड़ेगा, सच्चा होना चाहिए जो आप लिख रहे हो, तभी आप यू कैन सक्सीड.
2: बिल्कुल, सच्चाई सबसे बड़ा पैमाना, लेकिन किस तरह से बनाया जाए एक अच्छा रिज्यूमे, इस पर हम बात करेंगे. बनी रहिए, टिके रहिए हमारे साथ. और हाँ, आप अपने संदेश, अपने सवाल भेज सकते हैं 9868107070 पर. और दिल्ली के बाहर के श्रोता जो हमें कॉल के माध्यम से सवाल पूछना चाहते हैं 2342108 या फिर 2342108 नंबर के जरिए संपर्क करें, लेकिन एसटीडी कोड 011 जरूर लगाएं. और हमारे दिल्ली में श्रोता हैं वो बेखौफ, बिल्कुल बेखौफ, क्योंकि जब सपने देखे जाते हैं तो बेखौफ खुद को रचा भी जाता है. तो बिना एसटीडी कोड के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. फिलहाल ये गाना आपके लिए, और उसके बाद मिस्टर सेन गुप्ता, मैं चाहूंगी इस गीत के बाद आप हमें बताएं कि कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है एक अच्छे रिज्यूमे का.

0: हम हैं आपके साथ प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक इम्प्रेसिव रेज्यूमे बनाए। तो रेज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है, मिस्टर आनंद सेन गुप्ता ने आपको इस बारे में बताया। अब मुद्दा ये उठता है, बात ये उठती है, जब हम एक अच्छा रेज्यूमे बनाना चाहते हैं तो मन में ख्याल उठता है कि बनाए कैसे, क्या हो स्ट्रक्चर हमारे रेज्यूमे का, ये जरूर बताया आप हमें।
1: हाँ जरूर। देखिए, जो रिज्यूमे आप जो बनाते हैं, मैं दोनों बताया कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सीवी वो इलैबोरेट होता है, रिज्यूमे थोड़ा कंसाइज होता है। आपके पास जरूरी नहीं है बहुत बड़ा रिज्यूमे लिखोगे तो वो आपको जो प्रेसी होता था ना स्कूल में कि आप अपने सारा चीज को एक कंसाइज वे एंड उसमें बताएं, आपका वो पर्पस होना चाहिए। अब इसके दो पहलू हैं, एक पे कंटेंट और एक है इसकी प्रेजेंटेशन, राइट। ये दोनों मेन, तो दो तरह के ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं, एक फॉर न्यू जॉब्स फ्रेशर्स, एक है फॉर एक्सपीरियंस्ड। नाउ पहले बात करते हैं जो प्रेजेंटेशन। नाउ प्रेजेंटेशन में आपके लिए, क्योंकि अब सब डिजिटल होता है, पहले इट वॉज डिफरेंट, अब प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास प्रेफर्ड फॉन्ट साइज कौन सा होना चाहिए, आपका लेआउट कैसा होना चाहिए, आपका बोल्ड लेटर्स होना चाहिए, आप कीवर्ड्स अगर हाईलाइट करना चाहते हो। तो एक जो सीवी का जो और रेज्यूमे का फॉर्मेट होता है, जो सबसे पहले आता है कि आपका समरी होना चाहिए, क्योंकि आपके जो सिलेक्शन होता है आजकल रेज्यूमे का डिजिटली या पढ़ के भी कोई कर रहा है, वो करता है बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स को आपको बहुत ध्यान रखना होगा, ये बहुत ज्यादा जेनरिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को एक्टिव वर्ब्स नहीं यूज करना ज्यादा, जैसे क्रिएटेड, एनालाइज्ड, आपको एज अ योरसेल्फ एज अ पर्सन दिखाना पड़ेगा जो कि इनिशिएटिव लेता है, और जेनरिक एंड ओवरयूज फ्रेज, क्योंकि उनसे पता लग जाता है कि ये दिस इज लाइक रन ऑफ द मिल है। तो आपको अपना जो पर्सनैलिटी के कीवर्ड्स या आप जो जॉब पोजिशन चाहते हो, आपके जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, आपको वो लेस देन 100 वर्ड्स में एक्सपीरियंस समरी में देना होगा। आप ये समरी अगर आपका चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन अ फ्रेशर है कि जॉब है, ऑलवेज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। इसका मतलब आपका जो लेटेस्ट वाला डिग्री सबसे ऊपर होना चाहिए, जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन फिर 10th का जरूर दीजिएगा, हाँ, और मार्क्स इंस्टीट्यूशन ईयर सब कुछ होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इन अ टैबुलर फॉर्मेट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, क्योंकि आप देखिए इतने रिज्यूमे होते हैं, जो पढ़ रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है वो ढूंढे, उसको देख के पता लग जाए कि ये है। फिर आपको जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, चाहे जॉब हो चाहे डिग्रीज हो, ठीक है। अब कभी कभी आपको अगर पता है कि किस रोल के लिए आप जा रहे हो, अगर आपको पता है तो उसके रिलेटेड, सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि जो द कंपनी द ऑर्गेनाइजेशन विच इज लुकिंग आपके लिए ढूंढ रहा है उसके लिए क्या रेलेवेंट्स है। ये अगर आपने कर लिया ना सबसे डिफिकल्ट टास्क, देन आपका आधे से ज्यादा आपने जंग जीत लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या हाईलाइट करना है, आपको क्या बताना है। कोकरिकुलर एक्टिविटीज जरूर लिखिएगा आप, कंपनीज देखते हैं अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग, वो देखते हैं ऐसा कोई आपने किया हो जिसमें आपके लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं। कैप्टन ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम, आप लीडरशिप उसमें किया है, आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया है अपने स्कूल में कॉलेज में, वो सब जरूर लिखिएगा
0: जी। ये तो बात हुई, वो तमाम बातें जो हमें अपने रेज्यूमे इंक्लूड करनी है। कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हों या फिर जिंदगी में किसी मुकाम को पाने के बाद भी उन्हें महसूस होता है कि कौन सी चीज पहले मेंशन करें, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले लिखी जाए या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पहले लिखी जाए, क्या करिकुलर एक्टिविटीज पहले लिखी जाए या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें क्लियर करें जिससे कि एक इम्प्रेसिव रेज्यूमे की हम कल्पना कर सकें यहाँ पर।
1: आपका बाय डिफॉल्ट आपका जो समरी ऑफ योर सीवी और रिज्यूमे जो भी आप कहते हैं वो सबसे पहले आना चाहिए, इरेस्पेक्टिव आप फ्रेशर हैं या आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका सबसे ऊपर आना चाहिए। उसके बाद आप अगर फ्रेशर कर रहे हैं आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, क्योंकि आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। और जहां आप अप्लाई करोगे वहां ये पता है आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसको वैसे कीजिएगा कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और स्ट्रेस कीजिएगा आपने स्कूल और कॉलेज में क्या क्या किया गया। तो ये सब ये होना चाहिए फॉर इन केस ऑफ अ फ्रेशर। इन केस ऑफ एक्सपीरियंस है आपके पास, आप बेटर जॉब बेटर प्रोस्पेक्ट व्हाट एवर बी द रीजन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पहले आना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैटर करता है, एडुकेशनल इज जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द फैक्ट्स। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है वर्क का तो आपके लिए एडुकेशनल उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जो बंदा पढ़ रहा है उसको। पर्सन हु इज रीडिंग इट उसके लिए रेलेवेंस उतना नहीं रखता। इंटरव्यू में यस एब्सोल्युटली दिस कैन कम इन, बट रिज्यूम में इफ अ प्रोफेशनल प्लीज स्टेट योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट। प्लीज आपको ये जरूर मेंशन करना चाहिए आप किस पोस्ट किस रोल में काम कर रहे थे, आप किसको रिपोर्ट करते थे और आपके पास कितने टीम था। टीम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये सब बताना जो रेलेवेंट है बताना चाहिए।
0: आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप एक इम्प्रेसिव एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं कि आपको तुरंत रिक्रूटर रिक्रूट कर ले। जी, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे किस तरह से स्ट्रक्चर हो और आपने बताया कि कैसे हम

0: अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, अलाइनमेंट पे अगर बात आती है तो मार्जिन्स और हम जो छोड़ते हैं, जो गैप छोड़ते हैं हर हेडिंग के बीच में, वो कितनी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए?
1: देखिए, यूजली जो रिज्यूमे होता है वो आप बनाते हो, फिर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके डालते हो। ये देखा गया है कि आप अगर रिज्यूमे बनाते हो, जब पीडीएफ में कन्वर्ट होता है तो रियलाइन हो जाता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ द फॉन्ट साइज, बिकॉज ऑफ द पेपर साइज आपने जो सिलेक्ट किया है।
0: बिल्कुल।
1: टेक्निकली आपके पहले जब नॉन डिजिटल वर्ल्ड था तब हम लोग बोलते थे कि आप लेफ्ट साइड पे ज्यादा मार्जिन रखिए क्योंकि फाइल होगा। अब ये मैटर नहीं करता आपके लिए क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में होता है। आप कंफर्टेबली 1.5 से 2 इंच ईच साइड पे रखोगे आपका फॉन्ट साइज। सो आपके लिए जो प्रेफर्ड फॉन्ट साइज है वो एरियल इज अ वेरी कंफर्टेबल साइज। सैंस सेरिफ कहते हैं अच्छा है, साइंस सेरिफ जो फॉन्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एरियल इज सबसे पॉपुलर होता है। आपको ये पर्पज होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड क्लीन एंड वेरी कंसाइज, सो आपका जो फॉन्ट शुड बी इजिली रिलेजिबल। तो ये आपका पर्पज होना चाहिए। और आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए तो स्ट्रक्चर में आपका इंडेंटेड फॉर्म होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए जिससे कि रीडेबिलिटी हो। और जैसे आपका रिज्यूमे जब देख रहे हैं, वो पहले आपका समरी पढ़ के ही उसने सिलेक्ट किया, द पर्सन हैज सिलेक्टेड योर रिज्यूमे, फर्दर ही और शी बे डायरेक्टली गोइंग टू एडुकेशनल, तो उसको ढूंढना पड़े कहां एडुकेशनल है, ढूंढना ना पड़े कहां पे प्रोफेशनल है। तो ये पर्पस है।
0: आपसे ये भी जानना चाहती हूं कि जैसा कि आपने कहा कि ढूंढना ना पड़े कि मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्या मैं इन्हें बोल्ड कर सकती हूं या मैं इन्हें कैप्स में लिख सकती हूं, कैपिटल लेटर्स में?
1: बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कैपिटल कम करते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग इज लेजिबिलिटी इजी होनी चाहिए। आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ रहा है, इसको पढ़ रहा है पढ़ रही है, वो देखेगा, देख के बोलेंगे अच्छा ये है तो ये लगता है फिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, सीधा एजुकेशन में चले जाएंगे या उसमें चले जाएंगे। लास्ट में कोकरिकुलर एक्टिविटीज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एक चीज जो मैम बोल रहे थे, घर का एड्रेस कभी नहीं होना चाहिए,
0: क्योंकि जब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन
1: दे रहे हैं, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, घर का नंबर, घर का एड्रेस कभी नहीं होना चाहिए।
0: जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर रखा है। जब हम किसी की प्राइवेसी की बात करते हैं, उसकी आत्मीयता की बात करते हैं, तो इन सब चीजों को आप खुद को अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करना है और हमारा रिज्यूमे हमारे लिए बोलेगा, तो क्या हम में जो कैपेबिलिटीज हैं या हम में कुछ अच्छा है, मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है 100% मार्क्स रख रहे हैं या उसने कुछ अचीव किया है, क्या वो उसको हाईलाइट कर सकता है, बोल्ड कर सकता है?
1: देखिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है यूजली टेबुलर फॉर्म में इजी होता है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में होता है। आप में अगर अभी बहुत तरीके, सीजीपीए भी लिखते हैं, परसेंटेज भी लिखते हैं, ग्रेड भी लिखते हैं, तो आप जब करेंगे, आप जो लास्ट कॉलम यूजली वो होता है, तो पहला होता है द डिग्री ऑफ द बोर्ड, फिर होता है इंस्टीट्यूशन, सिटी, कोर्स का नाम एंड देन योर क्वालिफिकेशन, द मार्क्स। सो वो वाला चीज को आप बोल्ड जरूर कर सकते हैं इफ इट इज, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा है एंड आप चाहते हो कि द पर्सन हु इज सिलेक्टिंग देखे, तो आप हाईलाइट कर सकते हो आपके मार्क्स। एब्सोल्युटली
0: जी, बिल्कुल हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आपके सपनों को उड़ान मिले और आप अपना रिज्यूमे जब किसी को दिखाएं तो पढ़ने वाला यही बोले कि आप में कुछ बात है। बिल्कुल आप में कुछ बात है और आपके सपनों को पंख देने के लिए हम हमेशा हरदम हर पल आपके साथ हैं। और आज हम अपने प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं कि एक अच्छा इम्प्रेसिव रिज्यूमे किस तरह से बनाया जाए। बहुत सारे डूज पर हमने बात की है, लेकिन बहुत सारे डोंट्स पर भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि अगर हमें जीवन में ये पता लग जाए कि हमें ये काम नहीं करना है तो शायद बहुत ज्यादा आसान होता है हमारे लिए आगे का रास्ता।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आज का हमारा विषय है राइटिंग एन इम्प्रेसिव रिज्यूमे। और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर आनंद सेन गुप्ता, एक करियर काउंसलर हैं और 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन्हें कॉरपोरेट सेक्टर में। मिस्टर आनंद, हमारे पास एक संदेश आया है और इनका नाम भी आनंद है और ये कहते हैं कि अगर टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या अपने रिज्यूमे में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज इंटरेस्ट इनको मेंशन करना जरूरी है या नहीं है?
2: एब्सोल्युटली जरूरत है, इनकी जरूरत होता है। पर एक चीज जो मैं फ्रॉम अ अदर साइड जो सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो देखते हैं यूजली कॉर्पोरेट्स में कंपनीज में, वो ये देखते हैं कोई कोकरिकुलर एक्टिविटीज अगर आपके लीडरशिप स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन, आपका टीम मैनेजमेंट को करता है बताता है तो आप उसको तो सबसे पहले ली। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अगर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं, आपने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, आपने ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया है विद इन द स्कूल कॉलेज जहां पे आपको आपने टीम के साथ काम किया है, ये चीजें देखते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह एब्सोल्युटली मेंशन कीजिए, पर जो इंटरव्यूअर ये सिलेक्ट करते हैं आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं अच्छे, आपके अगर आपने टीम मैनेज किया है, आपने अगर लोगों के साथ काम किया है तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है रिज्यूमे में।
1: कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप इस रोल के लिए एकदम फिट हैं। हमने कुछ देर पहले डूज और डोंट्स से बात की थी, अगर एक बार जल्दी से हमें बात कर लें कि डूज क्या हो और डोंट्स क्या हो, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट से कि डूज क्या होने चाहिए एक रिज्यूमे बनाते वक्त।
2: डूज, सबसे पहले जो आपका डूज होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, चाहे आपका एक्सपीरियंस हो या आपका एडुकेशन बैकग्राउंड हो। रेलेवेंट डिटेल्स होने चाहिए सारे, क्योंकि क्या होता है कि कभी अगर कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है तो उनको डिसाइड करने में मुश्किल हो जाता है कि ये क्या है। तो जीपीए मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि आप अगर अपने अचीवमेंट को क्वांटिफाई कर सकते हो, जैसे आपने अगर ऐसा कुछ किया है जिसके लिए आपको अवार्ड मिला है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो फिर उनको ये पता लग जाता है कि आप जो बोल रहे हो उसको रिकॉग्निशन मिला है इन द ड्यू प्रोसेस, इन द ड्यू फील्ड विद द पीपल, राइट? आपको वो पता लग जाता है। कभी भी ओवर एग्जैजरेट नहीं करना है, आपको मेक श्योर आपका जो सच है आप उसको ही बताइए, क्योंकि नहीं तो बाद में, आजकल डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्टेड वर्ल्ड है, सब कुछ पता लग सकता है, आपके मार्क्स, आपके क्वालिफिकेशन सब कुछ पता लग सकता है, गूगल करके पता लग सकता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट से। सो इसलिए आपको बहुत केयरफुली आपको राइट चीज पोर्ट्रे करना चाहिए। सेकेंड चीज जो ये होना चाहिए, आप ये कुछ चीजें मैटर करती है, जो ईमेल एड्रेस है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड करना चाहिए। आप बोले प्रोफेशनल का क्या मतलब है, ये बहुत वियर्ड टर्म बता दिया आपने। प्रोफेशनल का मतलब होता है फर्स्ट नेम, सेकंड, लास्ट नेम एंड और फर्स्ट नेम एट रेट व्हाट एवर द ईमेल डोमेन यू हैव। आप कभी कभी अवेलेबल नहीं होता तो आप उसमें कुछ अल्फाबेट, कुछ नंबर, कुछ ऐड कर सकते हो। पर जो आपके पास जो ऐसे नेम्स होते हैं जो कि दूसरे निक नेम्स होते हैं, वो सब अनप्रोफेशनल लगता है, सीरियसनेस नहीं लगता जब जो देख रहा है। तो मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन पुटिंग द ईमेल आईडी। अगर आपको, मैंने अभी बताया था कि आप अगर सीवी ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो और आप सभी ऑनलाइन है, आप होम एड्रेस देना नहीं चाहिए आपको, है ना, क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि प्राइवेसी हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है,
1: जाते हैं। बिल्कुल। अब जैसा कि हमने कहा, हमने

0: बात की कि आपको कुछ ऐसा नहीं लिखना है जिससे आपकी छवि खराब हो जब आप इंटरव्यू बूथ में इंटरव्यूअर के सामने बैठे हों। पर कभी कभी ऐसा भी होता है मिस्टर सेन गुप्ता कि हमें ये कहा जाता है कि जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना रेज्यूमे जरूर बनाएं। इस बात पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए, क्योंकि अगर मैं जो नहीं हूं और मैं अपने आप को उस रेज्यूमे की माध्यम से प्रेजेंट करना चाहती हूँ तो कैसे मैं कंपनी को ये बता पाऊंगी कि मैं अप्रोप्रिएट हूँ इस जॉब रोल के लिए। तो ऐसे में कैसा बैलेंस्ड अप्रोच मुझे रखना होगा अपने रिज्यूमे को तैयार करने में?
1: बहुत ही उद्दा सवाल है ये, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं ज्यादातर बता रहा था आपको जहाँ पे आपको फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब चलते हैं आप प्रोफेशनल में आपका शुरू हो गया है एंड आपको चेंज करना है व्हाट एवर रीजन। सबसे पहले आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं और किसी टाइप ऑफ आप उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, क्या है, उसके वेबसाइट पे जाइए, उसके जहां जहां उसका प्रोफाइल्स है वहां देखिए कैसा है। आप कुछ कुछ प्रोफाइल्स बताती हैं कंपनियों के बारे में, आप वहां जाके उस कंपनी के बारे में पूरा पता कीजिए। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आइडियली जब आपको कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आपका एक जॉब JD होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। वो जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी वो बनाती है कि आपको कैसा क्या चाहिए उनको। तो ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट इनपुट होता है जिससे आप अपना रिज्यूमे को बेस करते हो। ये पढ़ने के बाद आप अपना रिज्यूमे तैयार करेंगे, आपके कीवर्ड्स, आपके अचीवमेंट्स, आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स क्या है, रेलेवेंट्स क्या है, वो हाईलाइट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास यूजली प्रैक्टिकली क्या होता है, आप दो चीज में अच्छे हो कंपनी में, आपको एक जॉब है जिसमें कि दो पैरामीटर्स है ए और बी, आप दोनों में इक्वली गुड हो, आपको एक ऑफर आया है जिसमें ए है, तो आपको रिज्यूमे को मॉडिफाई करना पड़ेगा विद एंड सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा विद फैक्ट्स। आप कोई भी चीज जो करेंगे आपके पास सब्सटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों चीज का आप एग्जांपल दे रहा हूं, HR इन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों रिलेटेड जॉब होते हैं, यूजली एक करते हैं। आप अगर प्योर HR में जाना चाहते हो तो HR को आप बताओगे ज्यादा, एडमिन को आप कम बताओगे, उल्टे तरीके से। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्ट होता है इंटरव्यू वाला जो पर्सन जरूर पूछेगा आपसे ये सवाल जरूर कि आप क्यों जाना चाहते हो HR से। सो आपको बहुत अगर प्रोफेशनल में आपको रिसर्च करके प्रॉपरली रिसर्च करके रिज्यूमे तैयार करना है। एक रिज्यूमे बना दिया वो सब जगह चलेगा ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता।
0: और जैसा कि आपने खुद कहा कि हमें एक्सटेंसिव स्टडी करना होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस कंपनी के बारे में जहां हम अप्लाई करने जा रहे हैं, और फिर जो आप अभी तक करते आए हैं और जो कंपनी करती है उस रोल के साथ मैच करते हुए अपने आप को प्रेजेंट करना होगा।
1: 100% करेक्ट।
0: तो कहते हैं कि सिर्फ लिखना नहीं बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप जैसा लिखेंगे वैसा ही अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपका जो CV है वो 100% आपके बारे में बोलेगा।
1: 100% और आपको वो मेंटेन, आप ये कहते हैं ना, आप अगर सच बोलेंगे ना आपको मुश्किल नहीं होगा उसको मेंटेन करना। आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू में, अगर इंटरव्यू में आपका रिज्यूमे आपका बेस होता है उसके बेस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चंस जो मैंने बोला है, जो मैंने पोर्ट्रे किया वो मैं हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और इंटरव्यू जो करेगा वो चेक करेगा इस चीज को।
0: भले ही आपने उस रोल के लिए कम काम किया हो, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ ये कहेंगे कि मैंने सिर्फ 2 साल या 2 महीने इस प्रोजेक्ट में काम किया बट आई एम केपेबल,
1: मैं केपेबल हूँ, मुझे एक्सपोजर अच्छा, जरूरी नहीं है लंबा काम करने से आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, कॉम पीरियड में भी आपको एक्सपेंसिव मिल सकता है। आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ये बात, ऐसा कुछ बायस नहीं होता इस बारे में।
0: और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, चाहे वो लिखने में हो या फिर
1: बोलने में हो।
0: जी बहुत खूब। तो अपनी बेसब्रियों को थाम कर बैठिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है आप तक पहुंचाना, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी को रिवील करने वाला आपका रिज्यूमे दुनिया में सबसे अलग हो। तो बेसब्रियां कैसी, दिल को थाम कर बैठिए। हमारे जितने भी श्रोता है उन्हें बताना चाहते हैं अगर मन में कोई सवाल है तो हम सवाल पूछिए 2342-1080 इस नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर 2342-1084 ये दूसरा नंबर है। दिल्ली के बाहर के श्रोताओं को STD कोड 011 लगाना होगा, या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मैसेजेस के माध्यम से 9868107070 हमारा नंबर है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर आनंद सेन गुप्ता, जो हमें बता रहे हैं कि एक इफेक्टिव इम्प्रेसिव रिज्यूमे किस तरह से बनाया जाए। और डॉली, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपने कहा कि हम तफसील से बताएं, तो तफसील से मिस्टर आनंद सेन गुप्ता ने आपको बताया किस तरह से रिज्यूमेस बनाए जाएं। अब मिस्टर आनंद आपसे ना ये जानना चाहते हैं कि कई बार हमारे करियर में ना बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। कह लीजिए किसी कारणवश मैं बीमार हो गई और मैं एग्जाम नहीं दे पाई तो मेरा करियर गैप आ गया। कुछ भी कारण हो सकते हैं, मैं कुछ और करना चाहती थी पर मैं कुछ और फिर मैंने उसे ऑप्ट किया, उसकी वजह से मेरा करियर ब्रेक आ गया। या फॉर एग्जांपल आप यूं कह लीजिए, उदाहरण के तौर पे बच्चे जो 12th के बाद कुछ साल तैयारियां करते हैं एग्जामिनेशन की, किसी कारणवश एग्जाम पास ना हो पाया पर करियर गैप तो करियर गैप है। अब इस करियर गैप को कैसे अपने रिज्यूमे में फिट इन किया जाए कि कल जब हम किसी और सेक्टर में जाएं तो हमारे ऊपर कोई आंच ना आए।
2: देखिए, जो करियर गैप है आपका प्रोफेशनल, पहली बात तो आपको जो मैंने सबसे पहले बताया था, आपको सच बोलना है और आपको बताना है जो हुआ था क्यों हुआ था। और ये चीज और भी एक्सेप्टेबल हो गया है अनफॉर्चुनेटली आफ्टर कोविड, लोगों को गैप लेना पड़ा चाहे ना चाहे, बहुत सारे रीजंस हैं। तो बहुत कॉमन होता है गैप, आपको गैप बताना है, आपको बताना है मतलब आपको दिखना चाहिए। आप जरूरी नहीं है, जैसे आपने किया ग्रेजुएशन किया आपने 2015 तक, आपका दो साल बाद नेक्स्ट डिग्री है नेक्स्ट जॉब पे, तो आपको दिखना चाहिए कि गैप है और आपके पास उसका रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन, और ये पूछा जरूर जाएगा। देखिए, डिजिटल के साथ आपका जो एडुकेशन वेरीफाई हो सकता है, आपका जो गैप को आपको जस्टिफाई करना होगा, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है कि आपने पढ़ाई छोड़ के मतलब कोर्स को परस्यू करके आप

0: ऐसे ही अगर करियर फ्लिप्स के बारे में बात किया जाए, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किसी और माध्यम से करनी चाहिए, तो ऐसे में अपने आप को किस तरह से मैं अंकित करूँ?
1: करियर फ्लिप अब धीरे धीरे, 20 साल पहले बहुत सब कुछ बहुत क्लियर था, आप ये करेंगे तो यहाँ नहीं कर सकते, साइंस करेंगे तो कॉमर्स में नहीं जा सकते कॉमर्स, पर अब धीरे धीरे वो एरिया अब बहुत इंटरमिंगल हो रहा है। एब्सोल्युटली ये पॉसिबल है, आप जा सकते हैं, पर आपके पास रीजंस होने चाहिए फ्रॉम अ स्किल स्टैंड पॉइंट या कॉम्पिटेंसी की तरफ से कि इस रोल के लिए आपको जो चीज जरूरत है आपके पास है। आपको ये बताना होगा कि आपके पास कैसे पता आपको है, आपका एजम्पशन है कि देर आर फैक्ट्स उसे कि आप इस रोल में जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने एग्जिस्टिंग रोल में ये पार्ट भी किया था, आपने उसमें बहुत सक्सेस पाया था, पर आपका वो मेन नहीं था, तो आप सोचते हैं जॉब फ्लिप के लिए बहुत जस्टिफाइड है। सेल्स वाले सबसे ज्यादा फ्लिप की कोशिश करते हैं एक इंडस्ट्री से निकलने के लिए, और वो बहुत हेल्दी प्रैक्टिस होता है। आप अगर B2B से B2C में जाना होता है, B2C से B2B में जाना होता है, ये कोई मतलब गलती नहीं है, कोई खामियां नहीं है आप में अब जो कर रहे हो, आप ग्रोथ के लिए जाना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट आ गया है। आप देखो कुछ चीजें आपको तब पता चलता है जब आप करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपका मेरा ये तो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, मैं बहुत बढ़िया कनेक्ट करता हूं, मेरे आई कनेक्ट वेल, आई कम्युनिकेट वेल, मेरे इतना कन्वर्जन रेट है ऑर्डर के लिए। आप चाहे B2C में हो B2B में हो, कुछ जेनरिक फैक्ट्स होते हैं जो ऑलवेज हेल्प करता है आपको ग्रोथ के लिए।
0: तो कहने का अर्थ बस इतना है कि छुपाइए कुछ मत,
1: कुछ छुपाइए कुछ नहीं, जो है पेपर पे दीजिए,
0: बस आपको अपने आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। मिस्टर सेनगुप्ता, हमने ये भी सुना है कि बहुत सारी कंपनीज जब इंटरव्यूज ले रही होती हैं तो वहां साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जिनका आभास हमें नहीं होता, क्योंकि हम यही सोचते हैं पैनलिस्ट है, ना जाने कौन से पैनलिस्ट कौन सा सवाल पूछ ले। अब वो एक चेहरा जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका रोल क्या है? क्या वो हमारे रेज्यूमे से वो निचोड़ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं?
1: देखिए ये जो इंटरव्यू बोर्ड में एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत जगह साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट होते हैं, वो ये देखते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज से ट्राई टू कि आप कितना सच बोल रहे हो कितना झूठ बोल रहे हो, पहली बात आपको वेरीफाई करते हैं आपका पर्सनैलिटी। अब जो दूसरा जो प्रचलन है जिस चीज का वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, तो आप जब सिलेक्ट होते हो कोई चीज के लिए आप पे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं बहुत सारे, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन आपको जज करती है आपकी पर्सनालिटी क्या है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट ये नहीं बताती कि सही है क्या गलत है, आपका पर्सनालिटी को आपका जो पूरा पर्सोना टाइप होता है उसको एक डॉक्यूमेंट पे डाल देते हैं, और जो आपका रिक्रूटर्स होते हैं वो देखते हैं कि ये वाला ये पर्सनालिटी हमारे कंपनी के कल्चर में फिट होगा कि नहीं। इस चीज का कोई गलत, मेरे साथ ऐसे भी केस हुआ, मेरे पर्सनली मैं सब कुछ क्लियर कर गया पर मेरा साइकोमेट्रिक टेस्ट में ये बताया, पता लगा कि ये पर्सनालिटी टाइप इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलेगा, और ये अच्छा है रादर देन आप ज्वाइन करके पता चलो कि ये ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट तो मेरे मतलब का ही नहीं है।
0: एक चीज और पूछना चाहूंगी, जो आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात की है, अब बहुत सी कंपनीज में आपके रेज्यूमे के साथ साथ आपको वहां सबमिट करना होता है क्वेश्चनायर, जहां बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो क्या उस क्वेश्चनायर के बेसिस पर भी आपके रेज्यूमे का आंकलन किया जाता है कि जो आपने लिखा है अपने बारे में वो क्वेश्चनायर के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं?
1: देखो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट दो तरीके से होता है, एक ऑनलाइन होता है जहां पे लिंक भेज दिया जाता है आप टेस्ट करो, और दूसरा होता है आपको क्वेश्चनायर देंगे। क्वेश्चनायर जो साइकोमेट्रिक इनवॉल्व जो फिजिकल पेपर एंड पेन वाला होता है उसमें आपका ये होता है कि आपको आंसर करना होगा, जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा वो आप देना होगा, उससे ये पता चल जाएगा आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, और वो जो आपके ट्रेट्स हैं वो आपके रिज्यूमे में दिख रहे कि नहीं। जरूरी नहीं ऑलवेज दिखे, कुछ कुछ चीजें होते हैं नहीं दिख रहे हैं, तो अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो वो चीज वो लोग कोलैबोरेट करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, बट एब्सोल्युटली जो पेपर एंड पेन इज अ फॉर्म ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट टू इवैल्यूएट, जो आपने जो बोला है मतलब यू आर ट्रूथफुल टू योरसेल्फ।
0: जी अब मुद्दा उठता है शॉर्ट रिज्यूमे और लॉन्ग रिज्यूमे, किसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है?
1: देखिए हर रोल का अलग होता है, जैसे आपके पास बहुत एक्सटेंसिव क्वालिफिकेशन है, आप एकेडमिक्स में आपका बहुत अच्छा रिज्यूमे है, आप आइडियल वे है आप उसके बारे में समरी तो जैसे मैंने बताया था वैसे लिखिए, आप अपेंडिक्स ऐड करिए सो दैट अगर कोई एनी रिक्रूटर वांट टू सी ही कैन गो टू द अपेंडिक्स एंड से कि अपेंडिक्स आपका, जैसे कुछ रिज्यूमे हमने ऐसे देखा है कि उन्होंने क्या किया, आपने प्रोफेशनल रिज्यूमे था फॉर अ जॉब, जॉब के लिए फ्रेशर का नहीं था, उसने उसके जो लास्ट उसके जो तीन जॉब्स थे उसके बारे में डिटेल वॉज गिवन इन अपेंडिक्स में था, समरी रिज्यूमे में था, अपेंडिक्स में उसके डिटेल था, क्या काम किया, डिटेल क्या है, किसी को इंटरेस्ट होगा तो चला जाएगा, इट इज एडवाइजेबल. आपका जो होल रिज्यूमे को आप अगर लॉन्ग करेंगे तो उससे इंटरेस्ट लूज हो जाता है, किसके पास इतना टाइम नहीं होता. इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन अ वे कि जिसको जो चाहिए ही कैन गो टू द डेप्थ.

0: as and when required. सबको नहीं जरूरत है, किसको जरूरत है तो चला जाएगा.
1: जैसे कि कुछ लोग एकेडमिक्स में जाते हैं, वो अपने थीसिस, अपने आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, जर्नल सब में मेंशन करते हैं, क्योंकि शायद वहां स्क्रूटनी की जाती है कि आपने इतना काम किया भी है कि नहीं किया.
0: तो उसमें आप स्पेशली जो ये बोले उसमें आप समरी में लिखिए, आई हैव सबमिटेड दिस मनी पेपर्स, आई हैव सबमिटेड दिस, वो लिखिए जरूर, जिससे कि आपका एक रेफरेंस हो. और अपेंडिक्स में आप डिटेल डाल दीजिए सारा.
1: जी,
0: आप लोग प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बनाते हैं लोग, जिसमें भी आप दे सकते हो, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स भी डालो, उसमें भी अपडेट करो. पर द बेस्ट इज आप मेंशन जरूर कीजिए आप समरी में आपने क्या क्या किया है, और उसका जो डिटेल्ड है उसका अपेंडिक्स 1-2 ऐड कर दीजिएगा.
1: क्या ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल तो हमारा जितना भी काम है ना वो भी ऑनलाइन मौजूद होता है, तो हम अपने काम का सोर्स या क्रेडिट दे सकते हैं कि हमारा ये काम यहाँ यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, उससे हमारा रिज्यूमे बड़ा भी नहीं होगा और शायद जस्टिफाई करना भी आसान हो जाए.
0: तो एब्सोल्युटली आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया. जब आप कोई पेपर करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, एक एंड में होता है कि आपका जो सोर्स क्या है, आपके बारे में क्या है, आप ये दे सकते हैं, ये अपेंडिक्स में दे सकते हैं कि मेरा पेपर हैज बीन पब्लिश्ड. आपने ये एकेडमिक्स के लिए बहुत रेलेवेंट है. एकेडमिक्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देन प्रोफेशनल का. एकेडमिक्स में आपका जो मेजर करने का तरीका प्रोफेशनल तो होता नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजर, तो आपको ये सब चीजें चाहिए होते हैं, पेपर चाहिए होते हैं, क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं.
1: कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, कभी कभी हमें सोचते हैं कि बहुत टफ और बहुत ही जटिल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो शायद रिक्रूटर हमसे प्रसन्न हो जाए, हमसे खुश हो जाए और हमें तुरंत हायर कर लिया जाए. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: देखिए, जो जेनरिक और ओवर यूज फ्रेजेस होते हैं, जैसे आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ टीम प्लेयर, मल्टीटास्कर, ये चीजें लिखनी नहीं होती. ये चीजें आपको ऐसे बताना होता है रिज्यूमे में जिससे पता लग जाए. आप अगर बोलेंगे कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था 2 साल के लिए 3 साल, जो भी है, मैं प्रिफेक्ट था, जो भी है, या मैं लीड कर रहा था ये प्रोजेक्ट अपने कंपनी में, उससे ये सारी बातें आ जाती हैं. वर्ड्स मे और मे नॉट डिलीवर द सेम इम्पैक्ट एज द डिस्क्रिप्शन.
1: जी, अब साइज, हमारा फॉन्ट साइज कितना बड़ा हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रिज्यूमे ना हो, शॉर्ट हो, तो रीडेबिलिटी यानी कि हमारे पढ़ने में भी आना चाहिए जो पढ़ रहा है आपके रिज्यूमे को, और साथ ही साथ वो दिखे भी, आप जो कहना चाहते हैं वो भी सामने वाले को समझ आए. तो कितना एप्रोप्रिएट साइज माना जाता है हेडिंग्स का, और जो कंटेंट हम लिख रहे हैं, अपने बारे में मेंशन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो हम कितना कितना रख सकते हैं, ये भी प्लीज हमें बताएं.
0: देखिए जी, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए 11 से 12 पॉइंट होना चाहिए फॉर एरियल, 14 से 16 होना चाहिए फॉर सेक्शन एंड टाइटल्स. अब सेक्शन एंड टाइटल्स को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये आपका प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्टैंडर्ड थंब रूल होता है. आप ऐसे करिएगा, आपका जो मैंने बताया था, जो टाइम्स रोमन एंड सैंस सेरिफ, ये सारे, एरियल इज द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इजिली, टाइम्स न्यू रोमन भी लोग यूज करते हैं, पर आपका जो फॉन्ट साइज है 11 से 12 पॉइंट्स होना चाहिए फॉर नॉर्मल टेक्स्ट एंड 14-6 पॉइंट्स होना चाहिए फॉर सेक्शन टाइटल्स एंड हेडर्स. सो ये आपका मतलब दिस इज अ साइंस राइट, बेस्ड ऑन डन बाय सम पीपल, ये थंब रूल आप मान के चल सकते हैं.
1: जी, तो इतने सारे रूल्स आपने हमें बताए और बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा लेसन दे गए, ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ, कि अगर हम ईमानदार हैं अपने प्रति तो शायद दुनिया को हमें समझाने की खुद को कम जरूरत पड़ेगी, हमारा काम बोलेगा, और जो हम अपने बारे में बताते हैं अपने रिज्यूमे के माध्यम से पढ़ने वाला तुरंत समझ जाएगा. तो समय कम है, लेकिन चलते चलते आप द्वारा कोई सजेशन, कोई टिप हमारे स्टूडेंट्स या उन लोगों के लिए जो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं.
0: तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो की मैसेजेस, तो मैंने काफी कुछ बताया है, एक एग्जैजरेट ना कीजिए, कोई बात को ज्यादा मत खींचिए, बात को रिज्यूमे में कीप इट, उतना रखिए, और वो जिसको चाहिए जो इन्फॉर्मेशन एट अ रिलेवेंट सोर्स होना चाहिए. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जब मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, लोगों से डिस्कस करता हूँ, स्टूडेंट से, कि हमारी पर्सनल फोटोग्राफ होना चाहिए कि नहीं रिज्यूमे में, एडवाइजेबल. इसका कोई किताब कुछ नहीं बोला गया है, किसी ने कहीं लिखा नहीं है, पर ये देखा जाता है फोटो नहीं होना चाहिए, और एड्रेसेस ऑन रिक्वायरमेंट देना चाहिए, फोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट मे गिव अ बायस और समथिंग. तो आप अपना रिज्यूमे को बात करने दीजिए, फोटो को अवॉइड कीजिए, फोटोग्राफ्स को.
1: जी, मिस्टर आनंद सेन गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए, और रिज्यूमे जिसके बारे में हम अक्सर बात ही नहीं करते हैं, आज आपके माध्यम से इतनी सारी बातें पता लगी. मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आप लेकर आएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से. वो नौकरी पाना जो बहुत मुश्किल लग रही थी ना, अब आसान लगने लगेगी.
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. कोई गाना आपको जो बहुत पसंद हो?
0: मैंने आपको बताया था किशोर का कोई भी गाना सुना दीजिए.
1: क्या बात है, तो क्योंकि आप किशोर कुमार के फैन हैं, इसीलिए आप सभी के नाम येगा.

0: रुक जाना नहीं तू कहीं हार
1: के। रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में, घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
2: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत कानूनी तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित फैसले स्वयं ले सकता है। साथ ही सुसाइडल अटेम्प्ट के खिलाफ सजा भी नहीं होगी। ये हम सबका दायित्व है कि मानसिक बीमारियों का इलाज कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर हो।
2: इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर। 102.6 आपके लिए।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का यह आयोजन आज शुरू हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। भारत ने जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अब भारत ने पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त किया है। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप. प्रोग्राम हम कदम लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति आप सभी के साथ. जी रोजाना की वही भागदौड़. इनफैक्ट देखा जाए तो मैं भी आज ना जरा दौड़ते हुए ही आई हूं. तो हमेशा ऐसा ही लगता है ना कि जैसे 24 घंटे जो है ना अक्सर कम पड़ जाते हैं हमें अपने लिए ही, अपने जरूरी कामों के लिए ही. अब ऐसे में भला दूसरे के लिए वक्त निकालें तो कैसे निकालें. जी जी वाकई में. और ये देखा जाए तो सिर्फ हमारे साथ नहीं, इनफैक्ट ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि भाई रोज रोज की इस भाग दौड़ में, काम के प्रेशर में और फोन की लगातार आती हुई नोटिफिकेशंस के बीच में आपका जो अटेंशन है ना वो इतना बट जाता है कि आपका पार्टनर लगातार जो है ना शिकायत करता है और ये कहता है कि क्वालिटी टाइम छोड़िए, आप तो हमें टाइम भी नहीं देते हैं. जी हाँ, आज उसी विषय के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में. नाम है इसका हम कदम. सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे. मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान की आवाज में बहुत ही अमेजिंग सा गाना. आप सुनते रहिए हम कदम प्रोग्राम ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में, घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
2: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: अरे रामवचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने?
2: अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है बस घोर उदासी, काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं।
3: सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको

0: सिर्फ ऐसे हर खर्चे, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
1: ठीक है,
0: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपोजिट करना होगा। जैसे डिपोजिट करेंगे, डिपोजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक
3: आकाशवाणी।
4: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति, आप सभी के साथ बात हो रही थी क्वालिटी टाइम की। देखिए ना, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। मेरा भी समय जो है आज के प्रोग्राम का, वो खत्म होने को है। लेकिन एक बात सच है और वो हमेशा रहेगी, जिस भी चीज़ को हम जिंदगी में प्रायोरिटी देते हैं, इम्पॉर्टेंस देते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हमें जो है वो निकालना ही पड़ता है, यानी कि समय निकालना ही पड़ता है। और ये समय जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एफर्ट करके ही निकाला जा सकता है, सिर्फ मेहनत करके ही निकाला जा सकता है, इसका और कोई तरीका नहीं होता है। तो आपके पार्टनर की आपके जीवन में कितनी अहमियत है, इस विषय को जो है ना, ये उस बात से पता लगाया जा सकता है कि आप उसे कितना समय देते हैं। तो समय देते रहिए ताकि ज़िंदगी में अहम चीज़ों की अहमियत बनी रहे। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे प्रोग्राम हम कदम सुन रहे थे आप मेरे यानी स्वाति के साथ। इसी के साथ स्वाति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
3: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी।
3: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
3: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
3: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
3: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
3: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
3: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
3: बिल्कुल सही,
2: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं
3: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार

0: क्यों पड़ा?
1: अजीत जी, सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे।
0: जी, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
0: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन

0: खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गांव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
0: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
0: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
0: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
0: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
0: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
0: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व तो और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: थक गई।
1: वो सोचने लगी,
0: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
1: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
0: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
1: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
0: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
1: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
0: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
1: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
0: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
1: पेड़ हंसने लगा।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं। बस सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
1: सिमरन ने आंखें झुका ली।
0: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
1: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
0: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
4: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और तो और।
0: बस बस, मैं समझ गई।
1: वो सोचने लगी,
0: परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
1: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
0: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
5: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है? अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना, है ना? ये हमारा अपना काम। तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम?

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2: बहुत अच्छा काम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
2: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक

0: सागर है। इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
1: सर,
2: गुड मॉर्निंग।
1: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
3: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
1: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
4: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
3: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा, इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
4: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
3: क्यों?
4: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
3: हो।
4: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
1: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए सक्कर में कर दिया जाए।
4: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
1: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
4: थैंक यू।
0: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
5: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
0: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
6: किसने खींची चेन?
3: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
4: जी सर, मैंने ही चेन खींची है सर। मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
6: व्हाट? क्या मजाक है, ये आप कैसे कह सकते हैं?
4: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
6: आइए आइए, देखते हैं।
4: आइए, हम भी चलते हैं।
6: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
4: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
0: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
4: आइए सर, आइए देख लीजिए।
6: अभी तक तो यहाँ भी ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं।

0: ये देखिए, यहां पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
1: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्रायः सुनाई नहीं देती है, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
0: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
2: वी आर सो थैंकफुल टू यू, इट्स अमेजिंग। मे आई नो योर नेम प्लीज?
1: आई एम डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया।
2: ओह, द इंजीनियर इन चीफ ऑफ माइसोर स्टेट।
3: और रेलवे सचिव भी।
0: नमस्कार सर।
1: जी जी सर, मैं वही हूँ।
2: नमस्कार सर, नमस्कार। We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
1: धन्यवाद।
4: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
5: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
4: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
5: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
4: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
7: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के तमाम श्रोताओं को के यानी कमल किशोर का नमस्कार। उम्मीद है दोस्तों आप सब बिल्कुल भले चंगे होंगे और सुख चैन की नींद सो रहे होंगे। और अगर चैन की नींद नहीं ले पाते हैं तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग से हमारे नींद में खलल पड़ती रहती है। जी हाँ, आप सभी बखूबी परिचित हैं, जानते हैं इसमें या तो नींद आती नहीं है या फिर नींद कम आती है या कई बार होता है कि नींद बहुत ज्यादा आती है, यानी कि नींद संबंधी विकार हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि हमने सदा की भांति आपकी समस्याओं के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट्स को आमंत्रित कर लिया है। जी हाँ, और वो भी एक नहीं, दो दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ, यानी कि होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, आज होम्योपैथी विषय को लेकर के, होम्योपैथी पर इसके क्या इलाज है, इस विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। नींद संबंधी विकारों यानी स्लीप डिसऑर्डर के लिए होम्योपैथी में क्या क्या इलाज है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं जो कि आप सारी जानकारियां ले सकते हैं और सवाल पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपने एक्सपर्ट से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, और आप प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है नेहरू होम्योपैथी कॉलेज और हॉस्पिटल नई दिल्ली में। आपका हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। और हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा जी, आप होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं। हम आप दोनों का इस विशेष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं आपका।
3: नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, ये जो नींद ना आने की बीमारी है, इसमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसे कि स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं, नींद संबंधी विकार कहते हैं, तो वास्तव में ये है क्या, इसमें क्या लक्षण होते हैं?
3: देखिए, जो नींद ना आना यानी कि स्लीप डिसफंक्शन या स्लीप डिसऑर्डर जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में इंसोमनिया बोलते हैं, स्लीपलेसनेस, तो ये बहुत सारे कारण इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि बहुत सारे रीजंस हम फाइंड आउट करते हैं, जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल यानी हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं, कुछ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके डिसफंक्शन डिसरेगुलेशन से हो सकते हैं। तो जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली किसी भी कारण, जो भी कारण हो, फिजिकल फैक्टर्स में जैसे सबसे मोस्ट कॉमनली देखा जाता है पेन
2: जी।
3: अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी क्रॉनिक इलनेस है और उसकी वजह से वो पेन से सफर कर रहा है
2: जी,
3: चाहे वो माइग्रेनस पेन है, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज का आर्थराइटिस का पेन है, चाहे वो कुछ पेशेंट्स जो कैंसर से ग्रसित होते हैं तो कैंसर का पेन भी बड़ा लिमिटलेस होता है
2: जी।
3: तो किसी भी तरह का पेन अगर है किसी भी व्यक्ति को, तो सबसे बड़ा पहला कारण वो बनता है नींद ना आने का। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे कुछ पेशेंट्स अस्थमेटिक होते हैं, सांस की नली में सूजन आने के कारण से ब्रेथलेसनेस होती है और रात को ये चीजें बढ़ती हैं, तो वो भी कारण बनता है नींद के डिसरप्शन में
2: जी।
3: तीसरा कारण आता है एनवायरमेंटल, यानी आसपास होने वाली कुछ चीजें, जैसे बहुत सारा शोर शराबा है
2: जी,
3: वो भी हमारे स्लीप को डिस्टर्ब करता है। बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, अगर हम अपने बॉडी को होम्योस्टेसिस यानी अपना वातावरण अनुकूल नहीं बना पाएंगे,

0: बॉडी का, तो उसके कारण से भी नींद में डिस्ट्रप्शन हो सकती है।
1: जी जी।
0: कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, अब जैसे आजकल बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एग्जाम स्ट्रेस है, एंग्जाइटी होती है कि कल एग्जाम है, आज हमने कोर्स पूरा किया नहीं किया, सिलेबस कवर हुआ नहीं हुआ, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण बनता है, एंग्जाइटी का कारण बनता है।
1: तो डॉक्टर साहब, तो क्या हम इन सबको एक बीमारी की श्रेणी में डाल सकते हैं, रख सकते हैं, कि सभी जो नींद नहीं आना, जिसके कारण से भी नींद नहीं आ रही है, तो क्या इसे हम बीमारी कह सकते हैं?
0: जी देखिए, शुरू में तो ये एक लक्षण के रूप में उभर के आता है, लेकिन कुछ लेटर ऑन स्टेजेस में ये एक बीमारी का रूप धारण कर सकता है।
1: अच्छा।
0: जैसे हम देखते हैं हमारे जो इसकी टाइप्स होती हैं, नार्कोलेप्सी, कैटालेप्सी, और हमारा होता है एक रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है, तो कुछ एक फिजियोलॉजिकली, बेसिकली स्लीप जो है एक फिजियोलॉजिकल पैटर्न है जो हमारे कॉग्निटिव यानी हमारे माइंड के फंक्शंस को नॉर्मल रखती है, हमारी मेमोरी को, हमारी बॉडी के पूरी फंक्शन